ये आकाशवाणी है FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 सितंबर वर्ष 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आज शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत और 6:05 पर आप आनंद उठा सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत में। लोकगीत और भजनों का कार्यक्रम होगा 6:20 पर माटी के

0: स्वर। शाम 7 बजे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुनेंगे और 7:30 पर सुनना ना भूलिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे आप दिल से। 8:30 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे झलकी तिजोरी और 9:15 पर आप सुन सकेंगे दर्द भरे गीत। आज सुबह 9:10 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। 9:20 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और 9:40 पर आप सुन सकेंगे गैर फिल्मी गीत। सुबह 10 बजे होगा गाने पुराने जमाने के कार्यक्रम और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये तो थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन, प्रत्याशियों के साथ राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल आज पद की शपथ लेंगे। प्रदेश में बारिश के मौजूदा दौर से नदी नालों में पानी की आवक जारी, धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के पास पहुंची और इसरो ने उसके निजीकरण और घटती भूमिका से संबंधित मीडिया की खबरों का खंडन कर स्पष्टीकरण जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार चरम पर पहुंचने लगा है। 9 सितंबर को होने वाली पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्ति का आज अंतिम दिन है। प्रचार के कुछ घंटे शेष रहते प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों ने भी मतदाताओं को रिझाने में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर में चुनाव प्रचार करेंगे। वे वहां रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनका पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से चर्चा का भी कार्यक्रम है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल रात जोधपुर में रोड शो कर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी गृह क्षेत्र अलवर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वोट मांगे। उनका आज जिले के मालाखेड़ा, रामगढ़, अलवर और बहादुरपुर में प्रचार का कार्यक्रम है। दूसरी ओर निर्दलीय और पार्टियों के बागी नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। इसके चलते कई जगह चुनाव त्रिकोणीय और बहुत सी जगह बहुकोणीय होने लगा है। इस बीच अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के वरिष्ठ नेता भी स्थानीय निकायों में प्रचार करने उतर गए हैं। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने कल जयपुर में अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट मांगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मतदान दिवस के साथ ही जहां पुनर्मतदान होगा वहां पुनर्मतदान की तारीख को भी संबंधित क्षेत्र में अवकाश रहेगा। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि सभी मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने और मताधिकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रयोग कर सकने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों

0: उपक्रमों और उद्योगों के लिए भी ये निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित नियोजकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। नगरीय निकाय चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जागरूकता रैली, पोस्टर, चित्रकला, रंगोली और मांडना के साथ ही कई नवाचार किए जा रहे हैं। 12 में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मतदान से जोड़ने के लिए ईएलसी क्लब के सहयोग से कई प्रतियोगिताएं रखी गई। निर्वाचन अधिकारी ने पहली बार वोट डालने वाले विद्यार्थियों को मतदान की प्रक्रिया समझाई। राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल आज पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े लोकभवन में उन्हें शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। न्यायाधीश अग्रवाल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार की मंजूरी और राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति का वारंट जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जस्टिस अग्रवाल के पास न्यायिक कार्यों के साथ साथ प्रशासनिक कामकाज का भी लंबा अनुभव है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर बीते 2-3 दिन से चल रहा बारिश का दौर अभी भी बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी भागों में अच्छी बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक हो रही है। धौलपुर जिले में 3 दिन से लगातार हो रही बरसात से कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है।
1: धौलपुर जिले में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर की कई कॉलोनियों में पानी घरों में घुसा हुआ है। वहीं करौली और सरमुद्रा क्षेत्र में बारिश के चलते पार्वती बांध ओवरफ्लो हो गया। इसको लेकर रविवार को बांध के सभी गेट खोलकर बांध के पानी को पार्वती नदी में निकाला गया। पार्वती नदी में पानी की आवक बढ़ने से जिले के सखवारा, कोलारी तथा सैंपो की रपटों पर आवागमन बंद हो गया। उधर हाड़ौती अंचल में भी लगातार बारिश हो रही है, इससे चंबल नदी खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। जिला कलेक्टर ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया तथा पटवारी एवं तहसीलदारों को क्षेत्र पर नजर रखने तथा पानी खतरे के निशान के ऊपर जाने पर गांव में लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर।
0: हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में कल रात भी बारिश का दौर बना रहा। बारा के शाहबाद, छबड़ा, मांगरोल और किशनगंज में अच्छी बारिश के समाचार हैं। बारिश के मौजूदा दौर से बरनी, रेपी और सुखार नदी में उफान आ गया है। जिले का अहमदी बांध लबालब हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हनुमानगढ़ के पल्लू में कल शाम खेत में बनी सिंचाई डिग्गी में डूबने से 3 किशोरों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार ये बच्चे मवेशी चराने निकले थे। इस दौरान एक भेड़ के डिग्गी में गिरने पर उसे निकालने के प्रयास में ये 3 किशोर भी गहरे पानी में डूब गए। मृतक बरमसर गांव के रहने वाले थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। गणेश चतुर्थी का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में गणेश पूजन और शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां होने लगी हैं। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर और राज्य के दूसरे गणेश मंदिरों में आयोजन को भव्य बनाने के इंतजाम हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जन्मोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि आज से महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है।
2: भगवान गणेश जी महाराज के जन्मोत्सव के कार्यक्रम

0: कार्यक्रम जो है वो 8 तारीख से कलश यात्रा से शुरू हुआ। 8 तारीख को भगवान के पंचामृत अभिषेक है, 9 तारीख को भगवान के मोदकों की झांकी है, 10 तारीख को विशेष श्रृंगार की झांकी है और शाम को कथक है, 11 तारीख को भगवान के विशेष झांकी और कथक का आयोजन है और 12 तारीख को भगवान के विशेष झांकी और कथक का है, 13 तारीख को भगवान के सिंजारा मनाया जाएगा, मेहंदी लगाई जाती है, 14 तारीख को भगवान की मंगला आरती 5 बजे है और शयन आरती 11:40 बजे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन, प्रत्याशियों के साथ राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल आज पद की शपथ लेंगे। प्रदेश में बारिश के मौजूदा दौर से नदी नालों में पानी की आवक जारी, धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के पास पहुंची और इसरो ने उसके निजीकरण और घटती भूमिका से संबंधित मीडिया की खबरों का खंडन कर स्पष्टीकरण जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषाद राज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल यहां आए हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए अनूप जलोटा की गाई ये भक्ति रचना।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 9:40 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीतों का। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोनू निगम का गाया ये गाना।

श्रोताओं, आइए गैर फिल्मी गानों में अब सुनते हैं नितिन बानी बाली का गाया ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत FMN 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। इस समय सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। समय हो चला है हमारे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी फिल्म साया से। इसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीत दिया था M.M. करीम ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म बोल राधा बोल का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है समीर ने।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला फिल्मी गाना, जिसे हमने लिया है सबसे बड़ा खिलाड़ी फिल्म से। इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, और संगीत है समीर का।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और अभिजीत ने, और इसके गीतकार हैं सुरेंद्र शेट्टी।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनिए अंजाम फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं आइए अब सुनिए फिल्म साजन का घर का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीतकार हैं समीर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गाने नए तराने नए, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमा सोनी का प्यार भरा नमस्कार।
1: तेरा ही कैदी है समझो तुम भी जो बात

उफ उफ ओफो, जी हाँ ये गाना हमने लिया है फिल्म बधाई हो से। इसे गाया है देव नेगी और हरजीत कौर ने। गाना लिखा है वायु ने और संगीत दिया है कौशिक, आकाश और गुड्डू ने।

ये गाना हमने लिया है फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था इस फिल्म से, और इसे गाया है यासिर देसाई और पलक मुच्छाल ने, संगीत दिया है नदीम साफी ने।

चिट्ठी तारों में मेरा सलाम रखना। जी हाँ, चन्ना मेरी यार, ये गाना हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने। इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है मिथुन ने।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं बादशाहों फिल्म का ये गाना जिसे गाया है नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान ने। इस गीत को संगीत से सजाया है तनिष्क बागची ने और गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम में आगे सुनिए एयरलिफ्ट फिल्म का ये गाना जिसे हमने लिया है एयरलिफ्ट फिल्म से और इसे गाया है अंकित तिवारी और अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है कुमार ने।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनिए ऑल इज वेल फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मिथुन और तुलसी कुमार ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और गीत लिखा है अमिताभ वर्मा ने।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम गाने नए तराने नए का आखिरी गीत अब आपको सुनाते हैं। फिल्म आशिकी 2 से इसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

श्रोताओं, आशिकी 2 में अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने नए यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त रमा सोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी नागौर के साथ। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। आइए बाप को ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: रंग तरंग कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश और सुधा मल्होत्रा के साथ साथियों की आवाज़ थी। साहिर लुधियानवी का लिखा ये नगमा था श्रोता रोशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

बेगम अख्तर की आवाज में सुदर्शन फाकर की लिखी ये ठुमरी आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया था उमराव जान फिल्म का नगमा। आशा भोसले की आवाज थी, शहरयार के बोल खयाम की तर्ज थी।

0: सदियां इस एल्बम में आप सुन रहे थे दिशा शर्मा और साबरी ब्रदर्स की आवाजें, समीर के बोल थे, अदनान सामी की तर्ज थी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हाँ।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गटले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
7: चिट्ठी न कोई संदेश।
3: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: तर्जर आवाज अदनान सामी की थी, समीर का लिखा ये गीत आपने सुना तेरा चेहरा एल्बम से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: लता मंगेशकर की आवाज में बाल कवि बैरागी की ये रचना आपने सुनी। जयदेव का संगीत था, फिल्म थी रेशमा और शेरा।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवियर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुरानी बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक सद्भाव को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण होगा और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 443 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 138 अंक गिरकर 23,759 पर कारोबार कर रहा था। दिग्गज सिनेमाटोग्राफर टीएन कृष्णन कुट्टी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कृष्णन कुट्टी ने 1960 में अपने करियर की शुरुआत उम्मा फिल्म में कैमरा ऑपरेटर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर के रूप में काम किया। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को स्थानीय फिल्मकारों और रचनात्मक पेशेवरों को व्यापक फिल्म उद्योग से परिचित कराने और क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 40 देशों की 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है। यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दिल ही तो है इस फिल्म की कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

पीएल संतोषी की रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी पोस्ट बॉक्स नंबर 999। और इसके पहले जो गीत आपने सुना, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें थीं। फिल्म थी कब हुई गवनवा हमार। मुनिंद्र शुक्ला के बोल थे, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।

0: अपेरा हाउस इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज आपने सुनी, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसकार चित्रगुप्त।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: का ये गीत आपने सुना, सी रामचंद्र की तर्ज थी फिल्म थी शिनशिना की बुबला बो। और इस गीत के पहले श्रोताओ, हमने आपको सुनवाया था जो गीत हम पंछी एक डाल के इस फिल्म से, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी, पीएल संतोषी की रचना थी, एन दत्ता का संगीत था।
1: आज मौसम चलो

दीपक वाले जगमग जगमग हो गया मेरे मन का कोना कोना रे मन का कोना कोना रे मौसम चलो ना रे हाँ चलो ना रे

कवि प्रदीप की रचना थी सरस्वती देवी की तर्ज थी। अशोक कुमार, रहमत बानो और अरुण कुमार की आवाजों में आपने सुना फिल्म झूला का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में पीएल संतोषी की रचना आप सुन रहे थे। शिवराम कृष्णा का संगीत था इस गीत में। तीन बत्ती चार रास्ता इस फिल्म का गीत था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: हम है सुर के दास प्यारे।
3: आमंत्रित कलाकार हैं
4: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
5: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा

0: सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से, और अब आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न होता है। श्रोताओं,
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य में नगरीय निकायों के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रत्याशी जी जान से जुटे हुए हैं। पहले चरण का प्रचार थमने के महज कुछ घंटे शेष रहते भाजपा और कांग्रेस सहित निर्दलीयों और क्षेत्रीय दलों ने भी अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अलवर और भरतपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वे वहां रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उनका पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से चर्चा का भी कार्यक्रम है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आज अलवर जिले के मालाखेड़ा, रामगढ़, अलवर और बहादुरपुर में प्रचार का कार्यक्रम है। दूसरी ओर निर्दलीय और पार्टियों के बागी नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। इसके चलते बहुत जगह चुनाव त्रिकोणीय और कई जगह बहुकोणीय होने लगा है। इस बीच चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कल मतदान दलों की रवानगी होगी। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 2 चरणों में 9 सितंबर और 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 20 तारीख को किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल को पद की शपथ दिलाई। लोकभवन में रखे गए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति अधिसूचना और वारंट पढ़कर सुनाया। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ न्यायाधीश, अधिवक्ता तथा न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026 बुधवार को वाराणसी में शुरू किया जाएगा। इस वर्ष का विषय हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखा गया है। इसके तहत हर नागरिक से आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया गया है। पोषण माह 2026 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। इनमें आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा भोजन, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही ही तथा बच्चों के विकास के लिए पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और शिक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत की

0: नींव के रूप में सुपोषित भारत के अनुरूप पोषण अभियान साल 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पोषण को देश के विकास के एजेंडे के केंद्र में लाना है। हर साल सितंबर में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पोषण माह अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके जरिए महिलाओं, बच्चों और किशोरों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ी अच्छी आदतों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रदेश में कई स्थानों पर बीते दो तीन दिन से चल रहा बारिश का दौर अभी बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से इसके थमने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी और दक्षिणी भागों में अच्छी बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक हो रही है। धौलपुर जिले में तीन दिन से लगातार हो रही बरसात से कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति हो गई है। सवाईमाधोपुर में बीते दिनों लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के गिलाई सागर और मानसरोवर बांध पर चादर चल रही है। बीते 24 घंटों में बौली में सर्वाधिक 16 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा खंडार और पांचोलास बांध पर भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड हुई। भाद्र मास में इन दिनों प्रदेश भर में धार्मिक गतिविधियां जोरों पर है। जन्माष्टमी के बाद अब गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। उधर उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक मेले रामदेवरा में इन दिनों देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रामदेव जी के जयकारों के साथ ध्वजा लेकर श्रद्धालु पद यात्राएं भी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, इंदिवर के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आमतौर पर शम्मा परवानी की दास्तान को आत्मघाती आकर्षण का रूपक माना जाता है, लेकिन आज की इबारत में शम्मा को इल्म की रोशनी और एक लक्ष्य का प्रतीक बनाकर प्रेम को उच्चतर अर्थ दिया गया है। परवाने का शम्मा की ओर खिंचाव महज अंधा मोह नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य के प्रति एक सजग जुनून है। एक और श्रोता ने लिखा है, इस इबारत में प्रेम की गहराई, विरह, इंतजार, जफा, वफा और शम्मा परवाने के प्रतीकात्मक रिश्ते को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इल्म की रोशनी, लक्ष्य के प्रति जुनून और समर्पण का संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत खूबसूरत है, इस बेहतरीन लिखावट में छुपे शब्दों के आधार पर आज सुरीला सफर में ये सदाबहार पुराने नगमे हो सकते हैं। शमा परवाने की बात है और कुछ गीत भी इन्होंने, बहुत सारे गीत सुझाए भी हैं, और भी हमारे श्रोता हैं।

जिन्होंने क्षमा परवाने के बारे में लिखा है। वैसे आपको बताएं श्रोताओं कि क्षमा शब्द पर जाने कितनी ही कविताएं लिखी गई, जाने कितने ही शेर, जाने कितने ही अल्फाज और उद्गार बताए गए। दुनिया बदली, दौर बदले, लेकिन क्षमा उसी शान और शौकत से आज भी जलती है। आपको कलाकार और फिल्म बताने हैं।

क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो शमा की तरह रोशनी बनकर आया, तो आप जरूर लिख सकते हैं। फिल्म अलबेला का ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि कलाकार कौन से हैं, तो आपको ये बताना है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, दिया ही बहुत रोशनी के लिए। दिया सिर्फ रोशनी नहीं करता बल्कि चारों ओर के अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार इल्म या ज्ञान का दिया इंसान की अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, उसके विचारों को नई दिशा देता है जिससे वो अपना और समाज का विकास कर पाता है। ज्ञान का दीपक अनश्वर होता है, खूब तेज इल्म जिसे कोई चोर भी न ले सके। कोई अगर आपने अपने लिखे हुए शेर शमा पर लिखे हैं तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं, और कोई गीत अगर शमा पर लिखा है तो वो भी आप भेज सकते हैं। वैसे लाइट्स तो सभी को अच्छी लगती है, और खासकर तब जब अंधेरों में जलती है। लैंप, झूमर, लालटेन, दिए, मोमबत्ती, यानी तमाम जो शामें होती हैं वो इससे जगमगाती हैं। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं श्रोताओं जो इसी तरह के सिचुएशन में फिल्माए गए हैं। आपको इनमें से कोई गीत जो पसंद हो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, कभी देखा है शमा को गौर से जलते हुए, वो परवाने की चाह में अपने को मिटा देती है और उफ तक नहीं करती। प्रेम की सबसे गहरी भाषा है शमा, किसी से गहरा प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद कभी मत करना, बस चुपचाप किसी जलती शमा के पास बैठना। जो कला जो हम में से हर एक को आनी चाहिए वो है शमा का शुक्रिया कहने का।

का, वो कैसे अपने को जलाकर तुम्हारी शाम और रात रोशन करती है। शमा खुद जलती है और हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। शमा ही तो सृजन का मूल स्रोत भी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढलते ही घरों की दीवारों पर रोशनी के लिए लालटेन या चिमनी जलाकर उजियारा किया जाता रहा। ये दौर तो नहीं देखा, पर जब इन्वर्टर नहीं आया था तब बरसात के मौसम में आंधी तूफान से बिजली की आपूर्ति बंद होने पर 2-3 दिन तक चिमनी की रोशनी में ही रहे। श्रोताओ, ऐसा तो होता है और फिल्मों में बहुत सारी जगहें ऐसी भी दिखाई गई हैं जब बैलगाड़ी जाती है और उस पर लालटेन की रोशनी होती है। ऐसा भी कोई गीत, कोई सीन आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बता सकते हैं।

पहले जो अलबेला का गीत, फिल्म अलबेला का गीत हमने आपको सुनाया, भगवान दादा और गीता बाली पर फिल्माया गया, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है और ये गीत था पुनर्मिलन फिल्म से अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया। इंदिवर की रचना थी, सी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मामू की बारात बैलगाड़ी में गई थी तो बहुत मजा आया था जब मैं छोटी थी। यानी कि बैलगाड़ी में अगर कोई रास्ता ऐसा होता है श्रोताओ, तो उसमें जरूर रोशन होती है शमा, किसी लालटेन के तौर पर या चिमनी के तौर पर। एक और श्रोता ने लिखा है कि शमा परवाना, दीपक पतंगा और ढलती हुई रात, इनका

रिश्ता बिना शर्त मोहब्बत त्याग समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। इस गहरे और रूहानी रिश्ते ने सभी को आकर्षित किया है। ये कोई साधारण जलना नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना है। और इन्होंने आगे ये लिखा है कि लौ दीपक की जलती है राह दिखाने के लिए, परवाना मचल जाता है खुद को मिटाने के लिए। जी हाँ, रिश्तों में भी ठीक ऐसा ही होता है कि रिश्तों में आजकल समर्पण कम देखने को आता है। तो इस बारे में भी अगर आपको कुछ लिखना है तो आप जरूर लिख सकते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि जो पढ़ाई जब हम कभी करते थे तो शमा की रोशनी में अक्सर पढ़ाई की जाती थी, ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि शमा जलती रही अपनी रोशनी में, परवाना मिटता रहा उसकी चाहत में। इश्क भी कितना अजीब है, जिसे पाना मुमकिन नहीं, उसी पर दिल सबसे ज्यादा आता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, शमा केवल रोशनी का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, समर्पण और उम्मीद की मिसाल है। शमा की लौ छोटी होती है लेकिन उसका उजाला बड़ा होता है, दूर तक प्रकाश फैलता है। इंसान कभी अगर अपने भीतर की अच्छाई, प्रेम और संवेदना की लौ जलाए रखे तो किसी के जीवन का अंधेरा कम कर सकता है। शायद इसीलिए शमा हमेशा से उम्मीद, प्रेम और त्याग का खूबसूरत प्रतीक रही है। जी हाँ, ये बहुत ही सटीक बात है श्रोताओं, कि हृदय में हमेशा दिल में एक शमा जलती रहनी चाहिए। ये दो अभिनेत्री कौन हैं और ये किन के बारे में बात कर रही हैं?

साधना और अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे महबूब फिल्म का, शकील बदायूं का लिखा। एक श्रोता ने लिखा है, बैलगाड़ी जाती हुई और लालटेन जलती हुई देखी गई, याद कीजिए फिल्म तीसरी कसम, हीरामन हीराबाई को लेकर फरबीजगंज के मेले बैलगाड़ी से जा रहा है। राज कपूर और वैजयंतीमाला कलाकार थे। जी हाँ, आपने देखी होगी शायद ये फिल्म, और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत इसका पिक्चराइजेशन भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि बिजली और लिखती हैं कि बिजली और आधुनिक स्ट्रीट लाइट के आविष्कार से पहले सड़कों शहरों में कोयला गैस से जलने वाले लैंप पोस्ट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। शाम को इन दीपों या लैंपों को जलाने और बुझाने के लिए विशेष कर्मचारियों या चौकीदारों को रखा जाता था। कई जगह नागरिकों के लिए ये नियम था कि वे अपने घरों की खिड़कियों के पास रोशनी का प्रबंध कर दें। बचपन में हमने भी देखा है, शाम होते ही केरोसिन के लालटेन को गोईठा यानी उपले के राख से साफ करके फिर उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर लालटेन जलाकर घर के दरवाजे दलान में रख दिया जाता था, जिससे सड़क गलियां जो है सभी तरफ का भाग जो है वो रोशन रहे। कलाकार आपको बताने हैं।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह होती है तो रोती है शमा महफिल की, रात भर जिसने उजाला किया उसे ही बुझना पड़ा। एक और श्रोता लिखते हैं कि छायावाद की मेरी आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कविता से कुछ पंक्तियों को साझा कर रहा हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। एक और श्रोता ने लिखा है, रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहां की, इस गीत को इन्होंने बताया है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो प्यार की जो शमा होती है वो दिल में हमेशा जलनी चाहिए। आज के जीवन में ये बात कितनी प्रासंगिक है ये आप हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि परवाने को शमा पर जलकर कुछ तो मिलता होगा, यूं ही मरने के लिए कोई मोहब्बत नहीं करता। शमा परवाना प्रेम के प्रतीक स्वरूप हैं, जिनसे प्रेम की पराकाष्ठा और समर्पण का पता चलता है। सच्चा प्रेम किसी भी परिणाम से डर कर पीछे नहीं हटता। और फिर आगे इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। आपको ये फिल्म और कलाकार पहचानने हैं,

की रोशनी से जगमगाता ये गीत था जो रोशन था, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला पर, और गंगा जमुना फिल्म का ये गीत था। इस गीत की डिटेल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसका लिखा हुआ ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दोस्ती में एक दोस्त रोड पर लैम्प पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, ये तो है। एक और श्रोता लिखते हैं कि देवदास फिल्म के आखिरी दृश्य में दिलीप कुमार जी बैलगाड़ी में बेसुध पड़े हैं और लालटेन की रोशनी में गाड़ी चली जा रही है। एक और इन्होंने ही बल्कि लिखा है कि बचपन में गांव में हमारी भी बैलगाड़ी थी, बारिश में ऊपर टप्पर लगाकर शहर खरीदारी के लिए जाया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद फिल्म में भी शमा लालटेन के रूप में दिखाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और गीत को भी इन्होंने याद किया है कि फिल्म में ये गीत था। आप ये नगमा सुने श्रोताओं और बताएं कि ये किसके ऊपर फिल्माया गया है, मतलब किन अभिनेता और अभिनेत्री पर।

आशिक फिल्म के इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है। राज कपूर और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो है शम्मा परवानी की बात है, ढलती रात सदियों से मोहब्बत, समर्पण और वक्त के गुजरने के फलसफे को बयां करता आ रहा है। शम्मा का वजूद एक खामोश तड़प है, परवाना एक समर्पित दीवाना आशिक जो मरने की हद तक, इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं बहुत लंबी चौड़ी। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि ढलती जाए रात इस गीत को इन्होंने लिखा है। जी हाँ, बहुत सारे गीत थे आज जो हमने इसमें सोचा था कि आपको सुनवाएंगे। देखते हैं कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि शमा और परवानी के बीच प्यार का रिश्ता अटूट निस्वार्थ और आत्मघाती प्रेम कहलाता है। शमा जलती रहती है और परवाना ये जानते हुए भी कि वो जल जाएगा, फिर भी उसके प्यार में उसी तरफ खींचा चला जाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि शाम ढले खिड़की तले और मेरे महबूब न जा, ये तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं और पसंद किए हैं। एक और सवाल आपसे कि जो हमने किया था कि जीवन में वो कौन है जो शमा की तरह आपके लिए रोशनी बनकर आया, आप चाहें तो बता सकते हैं श्रोताओं।

रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपको बताना है श्रोताओं कि इस गीत में कलाकार कौन थे। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने बताया भी है, तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। एक हमारी और श्रोता लिखती हैं कि अंधेरी रात में शमा की रोशनी जगमगा उठी, चांदनी की तरह बिखरती उस रोशनी में प्यार, वफा और समर्पण की एक अनोखी दास्तान छिपी थी। शमा और परवानी का रिश्ता सच्चे प्रेम, जुनून और तड़प की मिसाल है। कभी जफाओं की कसक, कभी वफाओं की आबरू, कभी महबूब की आगोश में बीतती रात, तो इन सभी एहसासों में प्यार अपनी पूरी शिद्दत से दिखाई देता है। शमा की तरह अपने लक्ष्य के लिए जलना और परवाने की तरह है। इसके आगे भी इन्होंने अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं श्रोताओं। तो आपसे हमने पूछा था कि जीवन में आपके वो कौन है जो एक शमा यानी रोशनी की तरह आया, तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और जलती हुई शमा एक हमने पूछी थी कि जो फिल्म गंगा जमुना का गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें दीपक की रोशनी है, दीपक की रोशनी और शमा की रोशनी, और अगर हम झूमर की बात करें तो उसकी रोशनी, ये सभी रोशनियों में आपको सबसे अच्छी किसकी लगती है और किस रोशनी के नीचे आपने कभी कोई शाम बिताई हो तो आप उस बारे में बता सकते हैं। यानी झूमर या कैंडल यानी मोमबत्ती या फिर दिए की रोशनी के तले कोई ऐसी सुंदर शाम बिताई हो जो आपके जहन में यादगार पल बन गई हो, तो आप ऐसी बातें हमें बता सकते हैं।

ये कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और फिल्म बतानी है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लाइट चली जाती थी तब लालटेन से पढ़ाई की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि धूल का फूल फिल्म में राजेंद्र कुमार लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि 60 के दशक में बैलगाड़ी से कई शादियों में हमने शिरकत की है, वो भी कई किलोमीटर तक।

राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कटी पतंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिए की रोशनी में मेरी इनकी शादी के बाद इन्होंने लिखी है, तब बिजली नहीं थी, लालटेन दरवाजे पर जला करती थी, बाकी घर में दिए जलते थे जो मिट्टी के तेल से जलते थे। बाकी जो है एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि कटी पतंग फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया और इस गीत की डिटेल लिखी है इन्होंने। अब आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि ये चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्मा ए दिल जो बुझे कभी न जल के।

अभिनेत्री चित्रा पर फिल्माया गया नूर महल फिल्म का ये गीत था सुमन कल्याणपुर की आवाज में। श्रोताओ, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम सुरीला सफर आज बस यहीं तक। आज का ये सफर आपने तय किया संगीता श्रीवास्तव के साथ।

आज की त्रिवेणी पनघट पर आधारित है। पनघट गांव के जीवन का धड़कता हुआ हृदय, जहां घड़ों में जल भरना, मन की बातें छलकती, खुशी के गीत गाती सखियों की टोली, हंसी की फुहारों, चूड़ियों की खनक, पायलों की रुंझन, लंबा घूंघट तो कभी दांतों तले दबा, उसमें से झांकती कचरारी अखियां, लोक गीतों की मधुर तान से पनघट का सौंदर्य और भी निखर जाता। भोर होते ही जब पनिहारी ने अपनी खाली घड़ी लेकर पनघट की ओर बढ़ती तो लगता मानो गांव की पगडंडी पर रंग बिरंगे फूल चल पड़े हों। सखियों की दुनिया बदल जाती, घर की जिम्मेदारियों से कुछ पल दूर वे अपने सुख दुख बांटती, एक

दूसरे की चुटकी लेती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। किसी की आंखों में सपने होते, किसी के मन में विरह और किसी के हृदय में किसी अनकहे प्रेम की हल्की सी दस्तक।

ब्रज में राधा कृष्ण की प्रेम भरी हंसी टिटोली, कहीं राह रोकने की शरारत, कहीं सखियों की हंसी और कहीं आंखों ही आंखों में कहे गए प्रेम के संदेश। पनघट के आसपास के वृक्ष झूम झूम कर हर्षित होकर हवा के संग नृत्य करते, हरे पत्तों की छटा आनंद के रस में सराबोर होते, मन को आकर्षित कर जाते। पनघट के रास्ते प्रेम का सुंदर पड़ाव बन जाते और मटकी भी अपने भीतर एक प्रतीक समेट लेती। वो केवल जल से भरा पात्र नहीं, स्त्री के जीवन की जिम्मेदारियों का मानो रूपक बन जाती। सिर पर धरी मटकी संभालते हुए पनिहारिन जिस सहजता से चलती, उसमें नारी के धैर्य, संतुलन और आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती।

समय बदला, गांव बदले और जीवन की सुविधाएं बढ़ी। घर घर नल और जल की व्यवस्था ने पनघट की आवश्यकता को कम कर दिया, लेकिन वो उस समय की याद दिलाता है जब जीवन थोड़ा धीमा था, रिश्तों में ठहराव था और छोटी छोटी मुलाकातों में आत्मीयता हुआ करती थी। लेकिन आज कुएं सूने हो गए, पनघट की चहल पहल खोल सी गई, गांव की पगडंडियां भी सूनी पड़ गईं। पनघट से भरी गगरी में भरा जल शीतल मीठा किसी पथिक की प्यास बुझाने में सक्षम हुआ करता था। पनघट भी एक ऐसी स्मृति है जहां कभी मटकी में पानी भरता था और लौटते हुए मन में पूरा संसार भर आता था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री

0: मंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
5: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
6: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना

0: होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
2: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
6: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 स्टूडेंट कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरेना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरेना सबालिंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी की आवाज में प्यार ही प्यार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गंगा की लहरें फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की यही है श्रोताओं आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
0: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
1: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन वो मेहनत भी कहते हैं ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना, तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
0: और संघर्ष, जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष की कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हें ही नहीं उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
1: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी, जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
0: अच्छा, एक बात बताइए चंचल जी, कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही, और आसमान, नीला आसमान कब देखा? वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा आसमान देखा?
1: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते तारों की छाव में, वो तारों की छाव भी खासतौर पर महानगरों में ना तारे नजर ही नहीं आते हैं। अगर नजर आएंगे भी ना, तो रात के 1-2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
0: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने नीचे उतर आया है, और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडी को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खासतौर से याद किया जाता है।
1: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
0: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
1: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, और कश्मीर के जो व्यंजन है इनकी बात होगी, तो दमालू भाई पंजाबी भी होते हैं लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या, एक गाना सुन लिया जाए?
1: पहले गीत सुन लेते हैं।

0: न ये आसमां था न ये जमी थी, भई आसमान की तलाश कौन नहीं करता है,
1: बिल्कुल
0: जमीन
1: ये
0: की
1: उन दिनों
0: तलाश
1: की
0: कौन नहीं
1: बात होगी
0: करता।
1: ना जब प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं था, तब ऐसी जमीन और आसमान नहीं थे, और अब ये जमीन आसमान हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है। हालांकि स्वच्छ हवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 99% जनसंख्या ऐसी है जो ऐसी ही तरह की हवा में सांस ले रही है जहां बहुत सारा प्रदूषण है। और इस नुकसान से खुद को और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को कुछ बातें समझनी जरूरी हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और हम जो कर सकते हैं वो ये है कि वायु को शुद्धता रखने के लिए जो है हम कचरा जलाना बंद करें, विद्युत कचरे का निस्तारण करें, सप्ताह में एक दिन वाहन मुक्त दिवस मनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ईवी को अपनाएं और सह वाहन यात्रा को अपनाएं कि अगर हमारे उसी रास्ते से कोई जा रहा है तो हम उसको साथ में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एयर के क्वालिटी इंडेक्स को देखने की आदत भी बनाएं।
0: चंचल जी, जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं हमारे फेफड़ों से सीधे रक्त में चले जाते हैं, इससे केवल श्वास रोग ही नहीं होता है बल्कि हृदय रोग होता है, मानसिक अवसाद भी बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो धरातल के निकट ओजोन परत अधिक बनती है, लू और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं, जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए
1: जी
0: 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार ये दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां वर्ष है,
1: और 2026
0: 6ठा वर्ष
1: में
0: है।
1: इसकी जो थीम रखी गई है वो है क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी खराब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
0: जबकि हवा हम सबके लिए जरूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है, और स्वच्छ स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा,
1: जी
0: और हम सबकी निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं, कम से कम इर्द गिर्द पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर

0: परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के।
2: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहां रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें, जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते, और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी।

0: मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत लाहौल विला कुबत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया, चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा,
1: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
0: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा, इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
0: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा,
1: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये लो, ये लो 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
0: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूं, आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
0: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया, इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता, इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
0: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें दबदबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
2: बाबू साहब, बाबू साहब।
0: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
2: नहीं।
0: मियां राहत ने ठंडी सांस ली, तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
2: हाँ।
0: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली, अरे भाई कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
2: बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
0: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूं?
2: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं, उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब, एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी,

0: उस पार्टी में काम करती हैं?
1: हाँ हाँ मैं जानता हूं, उनका नाम सुशीला देवी है ना।
0: बाबू साहब यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई। अब
1: अरे तो फिर इससे क्या?
0: क्या बतलाऊं बाबू साहब, अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
1: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
0: बाबू साहब ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है, इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोंटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
1: मैंने कहा मियां राहत इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
0: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह, इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
1: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
0: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
1: इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से दो आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
2: अरे निगोड़ा निगोड़ा, कलुआ कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा, भूखा मारेगा। हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे? ले नौकरी छोड़ने का मजा, ले ले मजा ले।
1: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
0: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय ये इश्क।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सखियाँ और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो
1: बिल्कुल
0: लेते हैं
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशे दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था, जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक

0: आदिवासी के याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया और 2023 से हर वर्ष 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
1: और ममता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध है, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसीलिए पुलिस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
0: बिल्कुल,
1: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी, तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
0: सही बात है, और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं, ये

0: लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
1: बिल्कुल इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है। हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
1: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
0: इसी तरह से एक संदेश हमें अब ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किल ही और मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा, हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होते
1: जब
0: हैं।
1: लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना,
0: हाँ,
1: तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानो प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार बार बार लिखना। तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाइयां आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है।
0: बिल्कुल,
1: याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
0: ये बात आपने बड़ी सही बताई। कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी ही दूरी पर मंजिल।
1: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं। बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
0: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा। और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
1: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूँ उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: सही बात है ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निखरेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेंटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सोंठ पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन बनने के बनने

0: वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेना, छोटे छोटे आकार के। सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए। ताज़ा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है। सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है। सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी, वो एक बड़ा चम्मच लेना है। दो चुटकी हमें हींग लेनी है। और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सकें। और इन आलू, जो छोटे छोटे आलू हैं, इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है। और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे, थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है। उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है। फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है। फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं, थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो है वो तैयार हैं।
1: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हमने पढ़कर सुनाई, और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये गाना।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन आहार विहार और डाइटिशियन की कब जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है।
2: हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन। जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है, वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती है, जिसमें वो देखती है कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं और वो कितनी मात्रा में है और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको

0: उसकी जरूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाएं, तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ये कितनी मात्रा में है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जिंदगी के हर पड़ाव पे जरूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की जरूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है, ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी जरूरी है, आपको अगर आप खिलाड़ी हो स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको जरूरी है, आपको आपकी पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको जरूरी है, और आपको समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है।
1: तो ये बताइए कि कैसे समझें, ये जो जरूरत होती है एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में उसको कितनी डाइट की जरूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषकता की खासतौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो।
0: ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके जिंदगी की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहां रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में एक चौथाई हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा आपकी दिन की काम करने के लिए,
1: ऊर्जा भी देगा,
0: ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में एक चौथाई हिस्सा सब्जी होना जरूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: मांसाहारी है तो आपको मच्छी फिश चिकन इसमें से आपको मिल जाता है, और जो एक चौथाई हिस्सा है इसमें आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज्यादातर सब्जियों से भर जाता है। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की जरूरतें क्या है, उस पे ये निर्भर करता है।
1: जी, और ये जो आपने बताई सब्जी, दो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। यहाँ पर एक गाना जरूरी है, कौन सा गाना सुने? हमें तो लगता है कि वो सादा खाना की बात है, तो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ,
0: क्यों नहीं, एकदम सही गाना चुना है आपने।
1: जारभाटा फिल्म का गाना सुनते हैं।
5: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

0: लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए।
1: अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक शक्कर ये वर्ज्य रहे, या आप उसे खाने में ना रखें।
0: अच्छा अच्छा ओके।
1: आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को जरूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना जरूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, आपके बच्चों को जितना जरूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना जरूरी है। दूध दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए, और प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। मतलब दाल पल्सेस जैसे राजमा छोले पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना जरूरी है। ये वही वक्त है जिंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के जमाने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं, आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहां पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दू ये नहीं दू, ये सही है ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको ध्यान देखना जरूरी है। वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना जरूरी है। जितना बचपन में खाना जरूरी है उतना बुजुर्गों के लिए भी खाना जरूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो बहुत रिजिड होते, तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है। मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना जरूरी है। क्या फल सब्जियां सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना जरूरी है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं।
0: अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाएं वो।
1: अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियां। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना जरूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं।
0: जी,
1: तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है, या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको ये फल ज्यादा खाने जरूरी है। जैसे सब्जियां हो गई, तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, हम उसको जो
0: पत्ती
1: वो
0: वाली सब्जी,
1: पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज्यादा कर पता नहीं होती है ऐसी वाली, बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है, जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा।
0: अच्छा,
1: और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी ही मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें आपको मौसम के आधार पर खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में।
0: जी।
1: नट्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दो चीजें अलग अलग है।
0: जी, जी।
1: लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं।
0: जी।
1: नट्स वो चीज है जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं, जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबियत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा ब्राजील नट्स आ गया। अभी ब्राजील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राजील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इश्यू है, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है, उसके बीज होते हैं पंकिन सीड्स, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं, अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है,
0: बढ़ जाता है।
1: अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल।
0: जी जी।
1: और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी है, जो जरूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन

0: थोड़ा थोड़ा
1: जी
0: करके खाते रहे।
1: जी बिल्कुल। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना?
0: क्यों ना देश की धरती सोना उगले, ये थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी देश की धरती है वो वाकई में हमें सोना देती है। जो मौसम की जो सब्जियां हैं, फल है, अनाज है, उससे हमारी सेहत तो वो ऐसे ही संभाल लेती है, तो
1: जी
0: उससे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए।
1: जी उपकार फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद अदिति जी हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की, यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है, और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए क्या कुछ इनके लिए जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीजें नहीं होती है, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं।
1: तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की जरूरत होती है उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सके। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है वैसे डाइटिशियंस में भी होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशुपालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है आहार, इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना जरूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिंस मिनरल्स आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया थोड़ा सा उल्टी होना है, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का जरूरी है, देखना जरूरी है कि आपके विटामिन मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है, उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहां पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही दूध सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे, ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी जरूरतें बढ़ सकती हैं जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे।
0: जी, ये यहाँ पर एक बात और है, एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूं लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा पोषण की जरूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है?
1: जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको विटामिन्स मिनरल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना जरूरी है, आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं मगर आहार के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम रहती है या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहां पे सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और महावारी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते।
0: तो किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है इन्हें?
1: तो इन्हें ज्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत जरूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी पड़ जाते हैं। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है, आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है, आपका खेल क्या डिमांड करता है। जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए,
0: जी,
1: जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज्यादा करोगे तब आपके परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल

0: के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुने
0: जी।
1: कौन सा?
0: क्योंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना कोई सक दे इंडिया का बढ़िया सा गाना हो जाए।
1: सुनते ही ये गाना।

0: अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में।
1: सर, ज्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। लीजिए एक आवश्यक सूचना सुनिए। आज शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में देश प्रदेश एवं नागौर जिले में कबड्डी और अन्य खेलों एवं खिलाड़ियों की दशा और दिशा विषय पर जिला खेल अधिकारी श्री सोहनलाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: तो जो आप खा भी रहे हो ना, वो शरीर को लगेगा ही नहीं।
0: जी जी,
1: छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे। बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ।
0: हाँ,
1: और वो चाय के साथ होती है फिर 2 बिस्किट या फिर 1 टोस्ट।
0: हाँ।
1: और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है।
0: जी।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
5: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है ज्यादातर मेलिन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती
0: है, ब्लोटिंग होने लगती
1: बहुत ज्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज है जो आपको फायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आप कि शरीर को क्या जरूरी है ये देखना जरूरी है और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीजें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी।
0: इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए खाने वाली कौन सी चीजें जिसे अपना दोस्त बनाए और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें दूर भगा दें, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की जरूरत होती है। आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम 2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत जरूरी है।
0: जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है?
1: बहुत ज्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, बेचैनी ज्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स के
0: डिप्रेशन
1: देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन एंजाइटी के अल्फाज यूज कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीजें होती है, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके खाने में क्या ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितने विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं।
0: अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं अनाज, तो ये सही तरीका है क्या?
1: नहीं, हर चीज का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको

0: गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: आप ही बता दीजिए कोई खाने के ऊपर गाना।
0: ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कि आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है।
1: बढ़िया,
0: तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
2: चॉकलेट लाइम जूस।

0: अदिति जी, अभी एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है बच्चों में, खास तौर से, वो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी होती है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बताइए।
1: सही बात बोलूं तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज करना जरूरी नहीं होता। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है।
0: जी जी।
1: अक्सर क्या हो जाता है, लोग, जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीजें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए, तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियां ना छोटी छोटी छोटी होती जा रही है, वही चार सब्जियां, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसके वजह से आप वो ही चार सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए, पर ये छोटी छोटी चीजें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं, रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज पे ध्यान दो कि आपके थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे।
0: जी बिल्कुल।
1: आपको कोई भी काढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है।

0: तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी है, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं,
1: जी,
0: और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है।
1: बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है?
0: ज्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए,
1: जी
0: हम
1: जी
0: यहाँ पे 200-300 ग्राम 4 लोगों के परिवार के लिए खाते हैं
1: बिल्कुल। एक पाव सब्जी लेके
0: बस।
1: बस मसाला डाल के बन
0: हाँ,
1: जाती
0: और
1: है पूरा।
0: उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहां पे दिक्कत आ जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना जरूरी है, आप उसको कम ज्यादा करने नहीं जा सकते,
1: जी
0: आप
1: जी
0: उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं।
1: अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, जीरो फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए?
0: जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती
1: जी
0: है। सिर्फ वजन के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में आप सुनेंगे देश प्रदेश एवं नागौर जिले में कबड्डी और अन्य खेलों एवं खिलाड़ियों की दशा और दिशा विषय पर जिला खेल अधिकारी श्री सोहनलाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
0: बाहर की खेलकूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स हैं, बस है, रिक्शा है, बाइक है, तो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं है। और इसके लिए जिम्स बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही जरूरी है। तो जब आप जिम करते हो, जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना जरूरी है, बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो, तो एक वो टाइम फिक्स करना जरूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना जरूरी है, जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल एक कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए, तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए।
1: जी, एक गाना सुने
0: जी।
1: कौन सा?
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, आईबीएस की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाओ, और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल।
1: मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन सी की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज नहीं है जहां से विटामिन सी मिल सकता है। अगर मैं बोलूं तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन सी ऐसे खुला रख दिया तो
0: ओहो
1: वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से।
0: जी,
1: तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन सी के लिए तो खा ही
0: ओहो
1: नहीं रहे हो।
0: जी,
1: वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन सी आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन सी की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीजें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि

0: बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होता, आप मीठा वाला ले लो अमरूद, तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज्यादा विटामिन सी भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीजें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आंवला एक चीज है, उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया।
1: करौंदा,
0: तो, करौंदा भी विटामिन सी है, बट करौंदा भी दो तीन तरीके के हैं, जैसे नॉर्थ में फालसा है उसको भी करौंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करौंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
1: आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं, वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किसमें होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: जितने हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाए, उसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरम्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं, बट आंवले का जो सीजन है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो।
1: जी जी, एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं, मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं, अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है?
0: लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक, या काला नमक, सेंधा नमक, और अलग अलग तरीके के नमक यूज कर रहे हैं। इसकी दिक्कत यह है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि जरूरी है जिंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें, या लूनी नमक, या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें, या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम
1: ज्यादा
0: थाली में ज्यादा डालते हैं, तो वहां पे दिक्कत आती है, और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज या ब्लड रिपोर्ट्स को खराब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की जरूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की जरूरत है।
1: जी, जी।
0: अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से
1: दाल में भी बिल्कुल।
0: तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना जरूरी है? नहीं
1: जी, बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कारगर बातें आपने बताई हमारे श्रोताओं को, बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में पोषण सप्ताह और पोषण माह के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की

बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी आप सुनेंगे आज ही के दिन अगले सप्ताह। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सुकून का एक कोना मैं और मेरी तन्हाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर शाम के 5 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युववाणी, मैं हूं कंचन रोशन। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं दोस्तों एक भेंट वार्ता। विषय है देश प्रदेश और नागौर जिले में खेलों एवं खिलाड़ियों की दशा और दिशा। दोस्तों, सोहनलाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत, सुनते हैं दोस्तों ये भेंट वार्ता।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं नागौर के जिला खेल अधिकारी और कबड्डी कोच श्री सोहनलाल गोदारा से, और इनसे हम बातचीत करेंगे खेल की जो स्थिति है, दशा और दिशा है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, प्रादेशिक स्तर पर हो और जिला स्तर पर हो। क्या कुछ खेल के बारे में होना चाहिए, खेलों के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में कितना हमारी सरकार सोच रही है और क्या उसके लिए प्रयास हो रहे हैं, जो खेलों में जो हमारी स्थिति है उसको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। गोदारा साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: गोयल साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें याद किया।
1: जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कबड्डी कोच हैं।
2: जी,
1: तो सबसे पहले हम कबड्डी की ही बात करते हैं, तो कबड्डी हमारा यहाँ का, मतलब हिंदुस्तान का, भारत का हमारा अपना खेल
2: है।
1: तो इस कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, जिला स्तर पर आप क्या प्रयास कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो स्पर्धाओं में कबड्डी की जो स्थिति है, यह कबड्डी को शामिल किया जाए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, उसके लिए क्या कुछ किया गया है और किया जा रहा है?
2: वर्तमान में एशियाड में कबड्डी खेला जाता है, एशियन गेम्स में कबड्डी खेला जाता है।
1: जी,
2: और कॉमनवेल्थ जो 2029-30 में आयोजित होने जा रहे हैं और उसके लिए भारत ने प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की है, उसमें भी भारत की ओर से जो खेल है वो कबड्डी
1: को शामिल किया
2: जाने के लिए,
1: उसके लिए प्रयास किए
2: जा रहे हैं। उसी के साथ 2036 ओलंपिक के लिए भी भारत ने अपनी दावेदारी रखी है। उसमें भी भारत का एक ये कि हमें आयोजन के साथ ओलंपिक के अंदर कबड्डी खेल शामिल किया जाए। पिछले ओलंपिक में भी एक ट्रायल गेम रखा गया था, क्योंकि कबड्डी 3-4 महाद्वीपों में तो बहुत अच्छे ढंग से खेला जा रहा है, लेकिन ओलंपिक में लाने के लिए प्रत्येक महाद्वीप की पार्टिसिपेशन, उसकी सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत का जो AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, लगातार प्रयास कर रहा है कि इधर जैसे अफ्रीकन देश है या अमरीका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर भी कबड्डी के मैचेजों का आयोजन हो और प्रो कबड्डी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया जाए और ग्रास रूट पे भारत में भी छोटी छोटी अकादमियों के माध्यम से कबड्डी गांव गांव तक पहुंचे। उसके लिए इस साल भारत सरकार और कुछ खेल प्रेमी मिलकर

0: एक सघन अभियान चला रहे हैं कि एक ऐसा दिन हो जिस दिन संपूर्ण भारत के सभी गांवों में, कस्बों में एक साथ एक इतने बड़े कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो जो गिनीज बुक में दर्ज हो।
1: जी, यानी कि कुल मिलाकर कबड्डी को लोकप्रिय बनाया जाए और जो जिन देशों में कबड्डी नहीं खेली जा रही है, उन जिन महाद्वीपों में नहीं खेली जा रही, वहां भी कबड्डी की शुरुआत की जाए, इसका प्रचार प्रसार हो। तो जाहिर है कि जो हम चाहते हैं कि कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में, ओलंपिक में शामिल किया जाए, तो वो संभव हो सके। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से इससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कबड्डी में जो हमारे पदक जीतने की दावेदारी है वो बहुत मजबूत होगी, क्योंकि तो हमारा अपना खेल है। तो कई देशों के जो खेल हैं वो शामिल हैं, लेकिन हमारा एक खेल जो शामिल नहीं है, इसकी वजह से हम पदक में पिछड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल किया जाए। हम जिला स्तर पर बात करें, आपके खेल अधिकारी चूंकि आप हैं नागौर के, तो जिला स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य जो खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: नागौर स्टेडियम में वर्तमान में कबड्डी का इंडोर हॉल, जिसके अंदर 3 कबड्डी मैट्स लग सके,
1: जी
0: इतना शानदार, लगभग 5.5 करोड़ का बनकर तैयार है, जिसमें बच्चे बच्चियां अभ्यास करते हैं। आउटडोर के 4 मैदान हैं जिसमें फ्लड लाइट भी है, वाटरिंग की अच्छी फैसिलिटी है, चेंजिंग रूम है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं,
1: जी
0: अच्छा जिम हॉल है, और अभी सिंथेटिक्स 400 मीटर के ट्रैक के लिए टेंडर हो रहे हैं और
1: जी
0: जल्दी बनकर तैयार होगा, और 1250-1300 मीटर का एक फाटलेक ट्रैक जो स्टेडियम की 4 दीवारी के आसपास जो बन रहा है
1: जी
0: वो बन के तैयार है, जिसमें एथलीट अपना अच्छा अभ्यास करते हैं। स्टेडियम के अंदर 2 वॉलीबॉल के अच्छे कोर्ट, आउटडोर कोर्ट जिसमें फ्लड लाइट है, 2 बास्केटबॉल के कोर्ट बनकर तैयार हैं, 11 क्रिकेट के पिच बनकर तैयार है जिसमें खिलाड़ी प्रयास करते हैं, हॉकी का मैदान है, ग्रासी मैदान 170 बाई 130 मीटर का बनकर तैयार हो रहा है जिसके चारों ओर फेंसिंग होगी, और एक यूथ हॉस्टल जिसके अंदर लगभग 100 बच्चे रह सकते हों, ऐसा आवासीय बिल्कुल पूरा वातानुकूलित वेल मैनेज्ड है, एक बैडमिंटन हॉल है जिसके अंदर 2 कोर्ट बन रहे हैं। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है।
1: जी, इसका मतलब सरकार की ओर से पूरा सहयोग आर्थिक तौर पर किया जा रहा है कि खेलों को और खेलों से संबंधित सुविधाओं को किस प्रकार से खिलाड़ियों तक उपलब्ध कराया जाए उसके लिए।
0: बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है, वर्तमान में इस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब बच्चे गांव से पलायन करके शहर के आते हैं, शहर में वो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता जागरूक है, अब उस
1: जी
0: बच्चे में टैलेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वास्तविक टैलेंट या तो गरीबी के कारण दब जाता है या उसको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी आवासीय अकादमियां ग्रास रूट पे, जिसमें बच्चों का टैलेंट सर्च करके, जिसमें किसी पर्टिकुलर गेम से कोई लेना देना नहीं है, 13-14 साल के वो बच्चे जो अच्छे फिट हैं,
1: जी
0: जो 5 गामक योग्यताएं हैं,
1: जी
0: उनके टेस्ट लेकर उनको लगभग 1 साल या अच्छा वर्कआउट करवाने के बाद, फिर उनका 1 साल या 1.5 साल 2 साल बाद जब लगे कि अच्छे फिजिकली फिट हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, उनको तो हायर
1: जी
0: जो सेंटर है उन पे भेजा जाए, और बाकी लगता है कि ये ले तो लिए लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको वहां से वापस अपने घर भेजा जाए।
1: जी
0: ऐसी व्यवस्थाएं हो तो भारत
1: जी
0: ओलंपिक की
1: यानी कि
0: पदक
1: जो
0: ताली
1: पोटेंशियल है, जिनमें पोटेंशियल जो बच्चे हैं जिनको कि आगे बढ़ाया जाए, तो वो कुछ नाम कर सकते हैं हमारे प्रदेश का, देश का,
0: जी
1: तो ऐसे बच्चों पर राशि भी खर्च की जाए और उन पर मेहनत भी की।
0: अभी बेशक भारत सरकार और राजस्थान सरकार खेलों पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है,
1: जी
0: जैसे आज एक ओलंपिक मेडल लेके आता है तो उसको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं,
1: जी
0: एशियाड में मेडल लाके आता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वो तब मिलते हैं जब वो मेडल लेके आ चुका है,
1: जी
0: लेकिन हमें चाहिए वो खिलाड़ी जिनमें जबरदस्त प्रतिभा है उनको मौका चाहिए,
1: जी
0: उनको मौका तब मिलेगा, और विशेष तौर से जब से 2% स्पोर्ट्स कोटा और आउट ऑफ टर्न पॉलिसी,
1: जी
0: मैं थोड़ा सभी जो सुनने वाले होंगे उनकी जानकारी के लिए अवगत करवाना चाहूंगा, आउट ऑफ टर्न का मतलब है अगर आप सीनियर नेशनल के किसी भी कंपटीशन में जो भारतीय ओलंपिक संघ से और राजस्थान ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल है
1: जी
0: उसमें अगर आप राजस्थान की जर्सी पहनकर मेडल लेके आते हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन,
1: जी
0: उसको राजस्थान सरकार एक फॉर्म भरने की जरूरत है, केवल घर बैठे आउट ऑफ टर्न मतलब किसी भी वैकेंसी की जरूरत नहीं है, उसको नौकरी देगी, एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसमें
1: जी
0: कोई दोराई नहीं है।
1: जी
0: दूसरा, 2% स्पोर्ट्स कोटा, किसी भी राजस्थान की कोई भी जो वैकेंसी निकलेगी

0: जो आरएस की मेन पोस्टों को छोड़ के एलाइड पोस्टों में
1: जी
0: उसमें भी है,
1: जी
0: और दूसरी कोई भी जैसे पटवारी की, ग्राम सेवक की, या थर्ड ग्रेड शिक्षकों की, सेकंड ग्रेड शिक्षकों की, या कोई भी वैकेंसी जो निकलती है उसके अंदर 2% स्पोर्ट्स कोटा है।
1: जी
0: निश्चित रूप से दिखने में खिलाड़ियों का फायदा दिखता है, लेकिन उसमें फायदा वो लोग उठाते हैं जो जागरूक इतने हैं कि जुगाड़ करके
1: जी
0: वो पहुंच
1: वहां
0: जाते
1: तक,
0: हैं।
1: और जो असली प्रतिभा है वो पहुंच नहीं पाती है। वही वाली बात जो है कि वो जो हम चाहते हैं कि जो प्रतिभा है जो गांवों में है, सुदूर में है, गरीबी में है, तो जो गुदड़ी के लाल हैं उनको ढूंढा जाए और उनको सामने लाया जाए और उनको निखारा जाए, उनको तराशा जाए और फिर उनको उनकी सही मुकाम तक पहुंचाया जाए।
0: उसमें सबसे बड़ी बात क्या है साहब, सिलेक्शन पॉलिसी,
1: जी
0: मैं बेबाक बोलूंगा उसमें मैं भी शामिल हूं।
1: जी
0: जब भी मुझे मौका मिलेगा कि भाई मैं एक राजस्थान की टीम को बनाऊं, तो उस टाइम मैं उन गुदड़ी के लाल की नहीं सोचता हूं, मैं मेरे लाल की सोच लेता हूं।
1: जी
0: और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और ड्रॉबैक यह है कि
1: जी
0: जब तक सिलेक्शन पॉलिसी है उनमें अच्छी पारदर्शिता, और अगर कोई गलत सिलेक्शन करता है तो उसमें एक उचित दंड की व्यवस्थाएं जब तक खेलों में नहीं होगी
1: जी
0: तब तक खेलों का उद्धार कभी नहीं हो सकता।
1: जी
0: क्योंकि जैसे एक 12
1: जी
0: खिलाड़ियों की टीम जाती है, 7 खिलाड़ी अंदर खेलते हैं, जो
1: जी
0: बेंच पे जो बैठे हैं वो लगभग बारात होती है, ये
1: जी
0: सच है। और इस सच्चाई को जब तक हम नहीं कबूलेंगे तब तक हम मेडल
1: जी
0: लिस्ट में या अंक तालिका में, ओलंपिक एशियाड में, हमेशा
1: जी
0: अपने को नीचे से ही देखना पड़ेगा, ऊपर से अंक तालिका देखने का काम नहीं पड़ेगा।
1: तो यानी कि एक तो खेलों को राजनीति से मुक्त किया जाए और खेलों में निष्पक्षता और जो खिलाड़ियों के सिलेक्शन है उनकी जो चयन है उसमें जो भी कमेटी जो उनका चयन करती है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्शन कमेटी में लिया जाए, ये भी बहुत जरूरी
0: नहीं
1: है।
0: साहब, अगर आप पॉलिसी अच्छी बनाओगे
1: जी
0: तो, अगर मुझे मान लो बना दिया, मैं खूब भ्रष्ट हूं,
1: जी
0: लेकिन अगर अच्छी पॉलिसी है तो मेरे में दम ही नहीं है कि मैं किसी को गलत ले लूं।
1: जी
0: जब तक मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैंने सिलेक्शन कर दिया, टीम चली गई, मेरी कोई सुनने वाला
1: जी
0: नहीं है।
1: टिकी बात
0: पॉलिसी ऐसी हो
1: जी
0: कि राजनेता चाहे तब
1: यानी
0: भी नहीं कर सके,
1: बिल्कुल
0: कोई अधिकारी चाहे तब भी नहीं कर सके, कोई खेल संघ का पदाधिकारी चाहे तब भी नहीं कर सके।
1: नहीं
0: अच्छा
1: चाहिए।
0: सिस्टम और एक दंड की उचित व्यवस्था
1: जी
0: हो।
1: वो तो दंड तो हर जगह आवश्यक है क्योंकि
0: बिल्कुल
1: भाई
0: सर,
1: बहन होते हैं प्रीति,
0: बिल्कुल सर,
1: जब तक भय नहीं होगा दंड का तब तक कोई भी काम आपका संभव नहीं है।
0: सही बात,
1: आज के समय में की खास तौर से हम बात करें तो वो साथ के साथ प्रोत्साहन और अच्छे के लिए पुरस्कार और गलत के लिए दंड, ये जो एक हमारी कानून व्यवस्था है उसका एक सामान्य सिद्धांत है, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें कि आज अब हम पिछले कुछ समय पे अगर नजर डालें पिछले 10-5 सालों में, तो कुछ खेलों में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है देश की। जहां ओलंपिक में हमें मेडल का सूखा रहता था, अभाव रहता था, अकाल रहता था, अब कुछ मेडल आने लगे हैं, ओलंपिक में भी आ रहे हैं, एशियन गेम्स में भी आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इसके लिए हमारे जो सरकार है उसके प्रयास रंग लाए हैं या कुछ और इसके कारक भी रहे हैं, किस प्रकार से और इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि भविष्य में और ज़्यादा मेडल लाए जा सके?
0: अभी भारत सरकार की 3 पॉलिसी खेल जगत में काम कर रही है।
1: जी
0: एक है एसटीसी,
1: जी
0: मतलब स्टूडेंट जो सिलेक्टेड होते हैं टैलेंट सर्च के बाद, और
1: जी
0: वो सही सेंटरों के अंदर अभ्यास करते हैं। एक होता है खेलो इंडिया सेंटर टैलेंट सर्च, जिसके अंदर स्कॉलरशिप भी है और वहाँ बच्चा रह के प्रैक्टिस करेगा। और एक होता है, एक खेलो इंडिया में एडवांस जो प्लेयर है,
1: जी
0: जो चाहे किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है या वो कहीं अन्यत्र प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी लगभग 10,000 रुपये मंथली
1: जी
0: स्कॉलरशिप के साथ समय समय पर उसको उस हायर सेंटर पे बुलाकर, उसके टेस्ट टेस्ट भी होते हैं, उसकी साल भर का एक मैप तैयार होता है कि इसने, इस लड़के ने या महिला खिलाड़ी या पुरुष खिलाड़ी ने कितने गेमों में भाग लिया, उसका
1: जी
0: ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एक एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक ग्राफिक्स तैयार होता है कि वो उसका ग्राफ अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या पैरेलल रह रहा है।
1: जी
0: इससे क्या हुआ, जो बच्चे आज मान लो कोई गरीब गांव का बच्चा है, लेकिन वो आज गांधीनगर एक साई सेंटर में प्रैक्टिस कर रहा है, गांधीनगर में वो लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है।
1: जी
0: तो भारत सरकार ने ऐसी भी स्कीमें की है, जैसे बेंगलोर के अंदर टेम्परेचर अच्छा रहता है, या शिलारू है जो
1: जी
0: हाई एल्टीट्यूड सेंटर है जहाँ बहुत ठंडा रहता है,
1: जी
0: वहाँ भी भेजने का सिस्टम है। तो सरकार निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल में जब तक, जैसे चाइना के अंदर सिस्टम क्या है, चाइना की सबसे अच्छी जो पॉलिसी है वहां का जो सिलेक्शन सिस्टम है वो लगभग 5-6 साल से लेकर 10 साल के बच्चों के बीच एक पूरे चाइना के अंदर एक सघन अभियान चलाते हैं। उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं कि चाइना का ये जो स्टेट हैं, तीन चार स्टेट, यहाँ ये गेम अच्छे चलते हैं, इधर जिम्नास्टिक अच्छा चलता है, इधर वेटलिफ्टिंग अच्छा चलता है। जैसे भारत के अंदर पहाड़ी एरिया है, जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, उधर के जो राज्य है वहाँ के लोग पहाड़ी होते हैं।

0: तो उनको पता है वो वेट लिफ्टिंग में उनमें बहुत मजबूत होंगे।
1: सबसे पहले जरूरत जो टैलेंट हंट की है कि टैलेंट हंटिंग इस तरह से हो कि कोई बच्चा जो प्रतिभाशाली है उसको ढूंढा जाए और उसको ढूंढ कर निकाला जाए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। तो जो आपने चाइना की बात भी की है तो वो भी उनके वही सिस्टम है कि जो टैलेंट हंट वो करते हैं, टैलेंट हंटिंग वो बहुत ही
0: बहुत
1: छोटे
0: गहराई
1: स्तर
0: से, बहुत
1: और
0: गहराई
1: बहुत
0: से।
1: गहराई से करते हैं। तो अगर आप प्रतिभा को शुरू में पहचान लेंगे, उसको तराशेंगे, तो जब तक वो बच्चे बड़े होंगे यानी कि 18-19 साल के, 20 साल के होंगे, तो वो तब तक काफी पॉलिश हो चुके होंगे। तो इसलिए उन बच्चों पर मेहनत की जाए। तो सबसे पहले तो कि हमारा जो टैलेंट हंट है वो बिल्कुल बढ़िया और सही तरीके से हो।
0: अब एक उदाहरण दूं सर मैं,
1: जी
0: जैसे मान लो मेरा शौक कबड्डी है
1: जी
0: और मैंने मेरे बच्चे को ट्रायल देने भेजा कबड्डी में,
1: जी
0: और कबड्डी कोच को यूं लगा कि ये बच्चा कबड्डी योग्य नहीं है, उसने निकाल दिया।
1: जी
0: चाइना में ऐसा नहीं है सर, चाइना में है जो बच्चा जाएगा वहां की अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ये बच्चा किस लायक है,
1: जी
0: उसके चाहे मेडिकल टेस्ट होंगे, उसके जीन्स तक चेक होंगे, जो बोन मास उसका कैसा है, फैट मास कैसा है, उसकी बॉडी में जो कंपोनेंट्स है उसकी
1: जी
0: हाइट कैसी है, ग्रोथ कैसी है, उसके माँ बाप की, उसके परिवार की ग्रोथ
1: यानी
0: कैसी है,
1: पूरी
0: उसके आधार
1: कंप्लीट
0: पर वो बिल्कुल तय
1: कंप्लीट
0: करते हैं
1: जो के हम कहें कि परीक्षण के आधार पर उसका
0: परीक्षण के
1: निर्णय था।
0: आधार।
1: ये नहीं है कि जो कोच है वो खुश हुआ तो सिलेक्शन हो गया, खुश नहीं हुआ, नाराज हो गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी
0: अब
1: किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, किसी भी प्रतिभा को लेना है या नहीं लेना है इसको लेकर।
0: और दूसरा क्या है सर, जैसे अपन आज एक कोई अरंडी का पौधा लगाते हैं, आप पानी डालोगे, एक साल बाद वो आपको बहुत बड़ा वृक्ष बनता दिखाई देगा,
1: जी
0: वहीं अगर अपन अगर बरगद लगाएंगे तो 3-4 साल तो वो जमीन से ऊपर उठने में भी टाइम लगाएगा।
1: जी
0: वैसा ही जो लॉन्ग लंबी हाइट के जो जेनेटिक्स बच्चे होते हैं उनकी जो शुरुआती ग्रोथ होती है, चाहे खेल में चाहे वो स्किल सीखेंगे, तब भी यूं लगेगा कि यार ये कुछ भी नहीं है। और लोग क्या करते हैं, उन बच्चों पे मेहनत करते हैं जो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं या बहुत जल्दी कुछ सीखते हैं, मतलब जो छोटे बोने बच्चे होते हैं शुरुआती स्तर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट है, उसके बाद वो खत्म है। इससे अच्छा उन बच्चों पे जिनकी ग्रोथ अच्छी है, जिनकी हाइट अच्छी है, जो बिल्डअप है, चाहे उनके पीछे लगना पड़े, उनको मन नहीं लगेगा क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, उनको गुरुत्वाकर्षण बल से भी लड़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उनकी ऊंची है, जब हर चीज से उससे प्रकृति से भी संघर्ष करना है, और छोटे आदमी को क्या, उसको तो जमीन के सारे सारे चलना है, तो सारे चलने वाला तुरंत रिजल्ट देता है। तो मैं उसको पकड़ के बैठ गया, मैं उस बच्चे पे 4 साल मेहनत करने की बजाय छोटे बच्चे पे 1 साल में रिजल्ट चाहता हूं, लेकिन वो बच्चा कहां तक पहुंचेगा, जयपुर तक।
1: जी
0: मैं अगर चाहता हूं कि वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट दे तो मुझे उस बच्चे पे काम करना पड़ेगा जिसकी ग्रोथ तो बहुत तगड़ी है
1: जी
0: लेकिन वो सीख लेट रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक बात और आती है कि अगर हम बात करें कि अगर जो नागौर और राजस्थान की कि क्या संभावनाएं, किन खेलों में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं करें तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर हमारे नागौर के बच्चे और राजस्थान के बच्चे किस किन खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए किस प्रकार से उनको बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: नागौर विशेष तौर सर, अगर सही ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए तो जितने भी मार्शल गेम हैं, चाहे मार्शल गेम मतलब जिसमें मैन टू मैन सीधा फाइट होता है, जिसमें बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि इंजरी भी हो सकती है, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, जैसे मान लो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में पता है कि भाई अपोनेंट तो इधर आने से रहा आएगी तो इधर बॉल आएगी,
1: जी
0: लेकिन फुटबॉल में खिलाड़ी भी आता है बॉल भी आती है,
1: जी
0: कबड्डी में खिलाड़ी भी आता है उसके साथ आपको 5-7 सामने
1: जी
0: रेडर के सामने एंटी रेडर भी मिलते हैं, हॉकी के अंदर बॉल भी आएगी, स्टिक भी आएगी, खिलाड़ी भी आएगा, इन सारे गेमों में, क्योंकि आज आप भारत की जो थल सेना में भी आप देखोगे तो इंडिया में सबसे टॉप अगर कहीं के जो सोल्जर है वो इस क्षेत्र के,
1: नागौर के।
0: बिल्कुल नागौर और आसपास, झुंझुनू मान लो, चूरू,
1: जी
0: सीकर,
1: जी
0: ये जो
1: हाँ ये
0: बेल्ट है,
1: पूरा जो बेल्ट
0: अगर
1: है
0: आप 99 में करगिल
1: बिल्कुल
0: युद्ध देख लो,
1: जी
0: उसके बाद भी जहां कहीं भी बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हो, जैसे
1: जी
0: डोकलाम विवाद हुआ, तब भी आपको इसी बेल्ट के फौजी सबसे ज्यादा लड़ते
1: जी
0: हुए मिलेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो
1: नागौर
0: लड़ने
1: झुंझुनू
0: और
1: ये
0: खेल और फौज की लड़ाई
1: जी
0: में दोनों
1: जी
0: में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लड़ना वहां भी पड़ता है, लड़ना यहां भी पड़ता है,
1: जी
0: डर गया वो चाहे कितना ही टैलेंट है, खेलों में और युद्ध दोनों में कहीं जगह नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जो डर गया समझो मर
0: हाँ,
1: गया
0: तो यहां बहुत टैलेंट है साहब,
1: बिल्कुल
0: यहां हॉकी के छोटे छोटे गांवों के अंदर किन्हीं शारीरिक शिक्षकों आके साल 2 साल में ऐसे प्लेयर तैयार किए, जैसे यहाँ नागौर का मेरा गांव कालड़ी है,
1: जी
0: उसके पास खड़काली गांव में आज से 15-20 साल पहले एक शारीरिक शिक्षक आए थे, तो उसमें बच्चियां इंडिया कैंप तक पहुंची थी, यहाँ
1: जी
0: संकवास और यहाँ का आसपास का गांव जो हॉकी जैसे गेम में आज से 20-25 साल पहले भी वहां के खूब नेशनल प्लेयर निकले हैं,
1: जी।

0: अभी कबड्डी में जैसे नागौर स्टेडियम में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो 8-10 जिलों के यहाँ बच्चे रह के प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियाँ भी जैसे बाहर से यहाँ
1: जी
0: रह के प्रैक्टिस कर रही है। तो हमारे यहाँ पर एक एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट लड़की भी है,
1: जी
0: 3-4 बच्चियों के नेशनल मेडल भी लगे हैं, और पिछले से पिछले साल जूनियर स्टेट में अपनी राजस्थान नागौर टीम विनर थी, नेशनल में मेडल था। तो
1: जी
0: उसमें अपने सेंटर के 7-8 बच्चे थे। तो ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस पर लगातार एक अच्छी टीम के साथ मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी। तो समय की भी हमें सीमा है, उसका भी ध्यान रखना है। तो हम इससे पहले कि अब हमारी बातचीत को विराम दें, मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं खेलों को लेकर, खिलाड़ियों से, उनके माँ बाप से, टीचर से, कोच से, खेल विभाग से, सरकार से, वो आपकी जो अपेक्षाएं, अपील है, वो आप बताएं हमारे श्रोताओं के लिए।
0: मेरी सबसे बड़ी अपील है अभिभावक से, क्योंकि बच्चा वहीं जाएगा जहां उसका अभिभावक ले जाएगा,
1: जी
0: क्योंकि जिस दिन वो खुद बूते जाने लायक होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी।
1: जी
0: वो बच्चों को खेलों में डालें, और सबसे बड़ी बात है उसको समय दें। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को ग्राउंड पे भेजा और वो 6 महीने बाद नेशनल चैंपियन बन जाएगा।
1: जी
0: उसका मौके मौके पर ध्यान रखें। खेल तभी चलेगा जब बच्चा, अभिभावक और कोच तीनों में गजब का सामंजस्य होगा।
1: जी
0: बच्चे में बहुत टैलेंट है, कोच बहुत ध्यान रख रहा है, अभिभावक लापरवाह है, बच्चा खराब होगा। अभिभावक बहुत जागरूक है, कोच बहुत जागरूक है, बच्चे में दिलचस्पी नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
1: जी
0: अभिभावक और बच्चा दोनों बहुत जागरूक है, लेकिन अच्छा कोच उनको नहीं मिल रहा है, तब भी कोई मतलब नहीं है। तीनों की तिगड़ी मिलेगी, आपस में भरोसा होगा,
1: जी
0: और खेल कोई ना पैसे से चलता है, खेल चलता है भरोसे से। जैसे एक पिता पर
1: जी
0: बच्चा भरोसा करता है, वैसे कोच पे भरोसा करना पड़ेगा, और विशेष तौर से कोच को भी उस भरोसे को कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उसके
1: सही
0: ग्राउंड पे एक बेटी भी आती है, बेटा भी आता है।
1: जी
0: उसमें अगर वो कुछ गलत करता है तो उसमें उसको वो दंड मिलना चाहिए कि जो लोगों के लिए एक मिसाल हो, क्योंकि वो वहां बैठा है जहां माँ बाप होने चाहिए
1: जी
0: निश्चित रूप से।
1: बिल्कुल
0: तो मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, आइए आप खेलिए, खेलों में बच्चों को समय दीजिए। सरकार की खूब सारी स्कीमें, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार खर्चा करे, खर्चों से खेल नहीं चलता है, खेल चलता परंपराओं से।
1: जी
0: जैसे
1: भावना से,
0: बिल्कुल
1: लगन से।
0: आज जैसे मेले भरते हैं,
1: जी
0: वैसे खेलों के मेले भरने लगे, लोगों का खेलों के प्रति रुझान हो। आज कितने ऐसे गांव हैं जिसमें अगर लोगों को पूछें भाई आपके गांव में सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, किसी को पता नहीं है।
1: जी
0: सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला कौन है, किसी को पता नहीं है। गांव में पहलवान कौन है ये पता होता था।
1: जी
0: आज आप पूछ लोगे 10वीं में कौन होशियार है बता देगा, साइंस का सबसे होशियार कौन है बता देगा, गांव में कितने डॉक्टर है कोई बता देगा, लेकिन ये बता देगा क्या कौन अच्छा दौड़ता है, क्योंकि दौड़ना आदत नहीं है।
1: जी
0: गांव में ये कोई बता देगा कि भाई रामदेव रा पैदल यात्री हमारे सबसे ज्यादा 20 बार ये गया है, लेकिन किसने किस खेलों में कितना भाग लिया, लोगों के पास आंकड़े इसलिए नहीं है क्योंकि सामाजिक जागरूकता नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात। तो वो जागरूकता लाने के लिए सभी को
0: जागरूकता लाने
1: मिलकर
0: के लिए
1: प्रयास करने
0: मेले
1: पड़ेंगे।
0: लगाने होंगे, गांव में लोगों के प्रति, खेलों के प्रति रुझान लाना होगा। केवल खर्चा करने से आज आप देखोगे कि एक सर्च करें अपने,
1: बिल्कुल
0: ऐसे ऐसे ग्राउंड बन रहे हैं जिसमें कभी किसी ने खेला ही नहीं और वो खत्म हो गए, और ऐसी खूब जगह है जहां खेल का मैदान नहीं है, वो जैसे तैसे मान लो कोई रिंग लटका के अस्थाई बेल्डिंग करवा के काम चला रहा, दूसरी तरफ 1 करोड़ का ग्राउंड है वो यूं ही खत्म हो गया जिसपे
1: जी
0: किसी ने नहीं खेला। सबसे बड़ी बात है ग्राउंड वहां बने जहां
1: जी
0: उस खेल का चलन हो।
1: जरूरत
0: किसी
1: हो
0: ने सिफारिश की, आपने खेल मैदान बना दिया, वहां कोई
1: जी
0: देखने वाला नहीं है। आज आप
1: बिल्कुल
0: सड़क से निकलो यहां से जयपुर के लिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: खूब ऐसे स्टेडियम होंगे जो बन के तैयार हुए और खत्म हो गए,
1: लेकिन
0: कोई नहीं खेला उसमें।
1: वहां से कोई खिलाड़ी नहीं निकला।
0: और कुछ ऐसी जगह है जहां कोई खेल कूद सुविधाएं नहीं है, लेकिन आपको 500 बच्चे खेलते हुए मिलेंगे।
1: जी
0: तो एक
1: बिल्कुल
0: जो चयन हो कि भाई कहाँ किस खेल का मैदान
1: जी
0: बने, तो उसके लिए सबसे पहले गांव में केवल नेताजी की या किसी की सिफारिश नहीं हो, उसका खेल में उस गांव का क्या रिकॉर्ड है, उसके आधार पर खेलों का निर्माण, खेल
1: बिल्कुल।
0: मैदान बनने चाहिए सर।
1: तो कुल मिलाकर और हम ये कह सकते हैं कि खेलों को अगर बढ़ावा देना है, हमारे देश को खेलों में आगे ले जाना है, तो केवल सरकार पर निर्भर रहना वो सही नहीं है। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, फंड की जरूरत है, फंड भी दे रही है, लेकिन हमें सामाजिक स्तर पर भी इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी। जैसा कि आपने बताया, बच्चों के साथ अभिभावकों को और जो भी खेल के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कोच हो, चाहे और संस्थाएं हों, पदाधिकारी हों खेल संघों के, सबको मिलकर ये
0: करना
1: निष्पक्ष
0: चाहिए,
1: और एक हम कहेंगे निष्ठा के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तो
0: बिल्कुल
1: निश्चित रूप से हम एक खेलों में देश का अच्छा भविष्य देख सकते हैं। गोदारा साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

0: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे खेल अधिकारी श्री सोहन लाल गोदारा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। विषय था खेल एवं खिलाड़ियों की दशा और दिशा। दोस्तों, कबड्डी जैसे खेलों को लोकप्रिय बनाना, नागौर में खेल की सुविधाओं का विस्तार से जानते हुए हमने इस वार्ता में इस बेल्ट में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनके बारे में भी जाना, और साथ ही प्रैक्टिकली किस प्रकार से खेल को तराशा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनके बारे में भी हमें इस वार्ता के माध्यम से जानने को मिला। दोस्तों, हम यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, बात करते हैं, कहा गया है ना, पहला सुख निरोगी काया। जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा तब निश्चित रूप से हम हर प्रकार से सुखी रह सकेंगे, और हर प्रकार की जो अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं, कर्तव्य हैं, उनको भी पूरा कर पाएंगे। अन्य प्रकार की सुख सुविधाओं को भी जब ही समझ पाएंगे, उनका उपभोग कर पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा और स्वास्थ्य उन सब के लिए हमें अलाउ कर रहा होगा। दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही जीवन जीने के लिए सेहत होना बहुत ही जरूरी है। ढेर सारा धन और शोहरत किसी काम के नहीं अगर सेहत ठीक ना हो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अक्सर लोग सफलता, पैसे और नाम के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। सभी कर्तव्यों और धर्म का पालन करने का पहला माध्यम है हमारा शरीर और उसका स्वस्थ होना। यदि शरीर रोगग्रस्त है तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा या ऐशो आराम हमारे लिए खुशी का विषय नहीं हो सकता। स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह संतुलित और ऊर्जावान होने की स्थिति होती है। दोस्तों, यहाँ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 में प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी का, हर पल को जीना ही असली हुनर होता है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब सखियों, मैं रईसा महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ। प्यारी सखियों, आज हम दो दुनियाओं में जी रहे हैं। कैसे? एक वो दुनिया जो हमारे आंखों के सामने है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और दूसरी वो दुनिया जो मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर है। पहली को हम रियलिटी यानी वास्तविकता कहते हैं और दूसरी वर्चुअलिटी यानी आभासी दुनिया कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सखियों, रियलिटी क्या है। रियलिटी वो है जो सच में है, जैसे सुबह माँ के हाथ की चाय पीना, दोस्तों के साथ मैदान में खेलना, बारिश में भीगना, दादा दादी की कहानियाँ सुनना। इसमें जो सुख दुख है वो असली है। अगर आप गिरते हैं तो सच में चोट लगती है, अगर आप किसी को गले लगाते हैं तो सच में प्यार महसूस होता है। अब बात आती है वर्चुअलिटी की, तो ये क्या है? तो वर्चुअलिटी एक बनाई हुई दुनिया है, इसे कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई और वीआर ने बनाया है, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स, वीडियो, कोई मोबाइल गेम वगैरह। इसमें सब कुछ सच जैसा लगता है पर सच होता नहीं। यहाँ आप अमेरिका में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते। अब हम बात करेंगे आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क सखियों, अनुभव का फ़र्क है। रियलिटी में अनुभव पांच इंद्रियों से होता है, जैसे देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना। आम को खाने का स्वाद आप सिर्फ रियलिटी में ले सकते हैं, वर्चुअलिटी में आप सिर्फ आम की फ़ोटो देख सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते। वहाँ अनुभव सिर्फ आँख और कान तक सीमित है। दूसरा फ़र्क, स्थाई और अस्थाई फ़र्क। रियलिटी स्थाई है, आपके माता पिता, आपका घर, आपका शरीर हमेशा आपके साथ है। वर्चुअलिटी अस्थाई है, मोबाइल की बैटरी खत्म,

इंटरनेट खत्म तो आपकी आभासी दुनिया भी खत्म। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है पर आपका असली परिवार नहीं। तीसरा फर्क मेहनत और परिणाम का फर्क है सखियों। रियलिटी में बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। परीक्षा में पास होने के लिए सच में पढ़ना पड़ता है। वर्चुअलिटी में सब कुछ फिल्टर और एडिटेड है। वहाँ कोई दो मिनट में अमीर दिखता है, कोई बिना दुख के हमेशा खुश दिखता है। ये हमें भ्रम देता है कि जीवन आसान है, जबकि रियलिटी में जीवन में संघर्ष जरूरी है। उम्मीद है सखियों आपको समझ आ गया होगा कि आखिर रियलिटी और वर्चुअलिटी में क्या फर्क है। तो अब बातों को देते हैं विराम और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये प्यारा सा नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। प्यारी सखियों, त्यौहार खुशियों का नाम है, ये हमें परिवार से जोड़ते हैं, मन में नया उत्साह भरते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है त्यौहार की भाग दौड़, खान पान और थकान में हम अपनी सेहत को भूल जाते हैं और त्यौहार खत्म होते होते हम बीमारी पड़ जाते हैं। सखियों, सच्चा त्यौहार वही है जब मन के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ रहे। सखियों, त्यौहार में सेहत बिगड़ने के कई कारण हैं, जैसे ज्यादा तला भुना और मीठा खाना, दीपावली, होली, दशहरा पर घी और तेल और चीनी से बनी चीजें ज्यादा खाई जाती हैं। काम में व्यस्त होने के कारण हम पानी पीना भी भूल जाते हैं। सजावट, खरीदारी और मेहमानों के कारण नींद भी भरपूर नहीं ले पाते। इन सब के अलावा साफ सफाई यानी बाजार की खुली मिठाइयां और गंदे हाथों से खाना, कुल मिलाकर साफ सफाई को लेकर हुई लापरवाही भी त्योहार के सीजन में हमारी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो सखियों, इन कारणों से बचकर त्योहार के सीजन को हम एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे आखिर त्योहारों में स्वस्थ रहने के उपाय, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: ब्रेक के बाद महिला जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सखियों, ब्रेक से पहले हमने बात की थी त्योहार के सीजन में खुद की सेहत का ख्याल कैसे रखें। इसके लिए सबसे जरूरी है खाने में संतुलन रखें। जी हाँ सखियों, त्योहार है तो मिठाई जरूर खाएं, पर एक सीमा में। एक दिन में 1 से 2 मिठाई का पीस काफी है। तलने की जगह भुना या बेक किया हुआ खाना चुनें। प्लेट में आधा हिस्सा फल और सलाद का रखें। बाजार की मिठाई की जगह घर की बनी मिठाई या हलवा ज्यादा सुरक्षित है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। ज्यादा मीठा और कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें। आप चाहें तो शिकंजी, नारियल पानी, छाछ वगैरह ले सकते हैं। खाना बनाने और खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, यानी सफाई का पूरा ध्यान रखें। बाहर से लाई हुई मिठाइयों को अच्छी दुकानों से ही लें और उसकी तारीख जरूर चेक करें लें, चाहे कितना भी

हो जाए। नींद से समझौता नहीं, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले। थका शरीर किसी भी त्योहार का मजा नहीं ले पाता। इसके अलावा सखियों, त्योहार के दिनों में कसरत बंद ना करें। रोज 20 से 30 मिनट टहलना, योग या स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे खाना भी पचेगा और थकान भी कम होगी। त्योहार दिखावे का नहीं, प्यार का नाम है। बजट से ज्यादा खर्च करके तनाव ना लें, काम को परिवार में बांट दें। इस प्रकार सखियों, त्योहार पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने के लिए होते हैं। अगर आप थोड़े से अनुशासन से खाएंगे, समय पर सोएंगे, सफाई रखेंगे, तो हम त्योहारों की खुशी को दोगुना कर सकते हैं। और अब आपकी खुशी और मनोरंजन को थोड़ा और बढ़ाने के लिए सुनते हैं फना फिल्म का ये गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अभी आप सुन रहे थे फना फिल्म का ये गीत। प्यारे सखियों, कोई भी त्योहार हो और नारियल के लड्डू या बर्फी की बात ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। सखियों, इसमें एक ही मिश्रण से दो चीजें बन सकती हैं। अगर थाली में जमा दोगे तो बर्फी, गोल गोल बना दोगे तो लड्डू। सखियों, आज मैं आपको बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क वाला, हेल्दी वाला नारियल के लड्डू बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल 2 कप या सूखा नारियल बुरादा आप 2 कप ले सकती हैं, गुड़ 1 कप बारीक कटा हुआ, देसी घी 1 चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़े से कटे हुए काजू बादाम। अब इसको बनाना कैसे है बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सखियों, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि नारियल के लड्डू बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसे बनाना कैसे है तो ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कढ़ाई में घी गर्म करें, उसमें नारियल डालकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूने, ज़्यादा लाल नहीं कर सकते। अब कटा हुआ गुड़ इसमें डाल दें, गुड़ पिघलने लगेगा और नारियल के साथ चिपचिपा मिश्रण बन जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक आप पकाएं, जब तक मिश्रण कढ़ाई छोड़ने ना लगे। इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालें और गैस बंद कर दें। मिश्रण को 2 मिनट ठंडा होने दें और हाथ से थोड़ा घी लगाकर गरम गरम ही गोल गोल लड्डू बना लें। तो ये तैयार हुए नारियल के पाउडर के लड्डू, यानी नारियल के लड्डू। ध्यान रखना सखियों, गुड़ में आयरन है, ताजे नारियल में हेल्दी फैट है, ये चीनी वाली मिठाई से बहुत बेहतर है। अब 10 मिनट वाली इंस्टेंट नारियल बर्फी के लिए आपको चाहिए नारियल बुरादा 2 कप, दूध 1 कप, चीनी 3/4 कप, मिल्क पाउडर 1/2 कप, घी 1 चम्मच और इलायची पाउडर। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में दूध और चीनी डालकर उबालें, चीनी घुलने तक इसे चलाते रहें। अब नारियल बुरादा और मिल्क पाउडर इसमें डालें, धीमी आंच पर चलाते रहें। मिश्रण गाढ़ा होकर हलवा जैसा हो जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तब घी और इलायची डालकर गैस बंद कर दें। एक थाली या ट्रे में घी लगाएं, मिश्रण को इसमें डालकर समतल कर लें। ऊपर से पिस्ता कतरन लगाएं और 1 घंटे फ्रिज में रखें और फिर चौकोर बर्फी काट लें। इस तरीके सखियों, आप नारियल के लड्डू और बर्फी घर पर बनाएंगे तो वाकई में लाजवाब बनेंगे। तो ये बात हुई नारियल के लड्डू और बर्फी के बारे में। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं ये गीत।

इसी के साथ सखियों, समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि आज की मेहनत कल रंग लाएगी, हर कोशिश एक दिन सफलता दिलाएगी। मत रुकना कभी छोटी सी हार से, यही स्ट्रगल आपको स्ट्रोंग बनाएगी। अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रईसा को, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के

0: कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजेदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए। श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर। सुनवाते हैं फिल्म किस्मत कनेक्शन का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की है, संगीत प्रीतम का है और गीत लिखा है सैयद कादरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म राज रिबोट से। संगीत जीत गांगुली का है और गीत लिखा है कौसर मुनीर ने।

श्रोता हूँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कॉकटेल से। संगीत प्रीतम का है और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्यारे से नगमे। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 6:20 होने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें हमारे आज के कलाकार है दयाराम गुजर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर में दयाराम गुजर को।

प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम माटी के स्वर में दयाराम गुजर को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 में अब आप सुनेंगे जयपुर के अंदर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: समाचार।

मुख्य समाचार। प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के 9 सितंबर को होने वाले पहले चरण के लिए प्रचार थमा, मतदान दल कल रवाना होंगे। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस को व्यापक भागीदारी से जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। और प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना, 12 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार।

0: समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज शाम थम गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन आज राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने मतदाताओं को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर और भरतपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किए। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अलवर जिले में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मालाखेड़ा, रामगढ़, बहादुरपुर और अलवर में जनसंपर्क किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने समर्थकों के साथ रोड शो कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया। पहले चरण के लिए 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए वोटर आईडी सहित 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। इस बार बीएलओ घर घर जाकर मतदान पर्ची नहीं बांटेंगे। मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में जांचना होगा। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को पोलिंग बूथ की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पहले चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी कल सुबह शुरू हो जाएगी। वहीं आयोग की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हैं और विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। राज्य के 309 नगरीय चुनावों पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सबसे ज्यादा 24,00,000 से अधिक वोटर नगर निगम जयपुर में और सबसे कम 4,744 मतदाता इंद्रगढ़ नगर पालिका में हैं। 10,245 वार्डों में होने वाले निकाय चुनाव के लिए 16,465 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दो चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 1,15,000 से अधिक कार्मिक नियोजित किए गए हैं। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग 1,00,000 पुलिसकर्मी

0: कर्मी मोर्चा संभालेंगे।
1: चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए स्वीप गतिविधियों का सिलसिला जारी है। मतदाता जागरूकता के लिए सलूम्बर में आज प्रगणकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीले चावल बांटकर मतदान का न्योता दिया। वयोवृद्ध मतदाताओं का भी सम्मान कर लोकतांत्रिक योगदान के लिए आभार जताया। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोकभवन में हुए समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति अधिसूचना और वारंट पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। नए मुख्य न्यायाधीश आज जोधपुर मुख्य पीठ भी पहुंचे। उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। वहीं न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी को स्थानांतरण पर विदाई दी गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राइजिंग राजस्थान के एमओयू के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान के एमओयू के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने इनके जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का भी जल्द समाधान किया जाए, जिससे निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। मुख्य सचिव ने आज स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा बैठक ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स को मॉड्यूलर ओटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सिमिलरली एंटीनेटल केयर पे जो उनका फोकस रहा है, एंटीनेटल केयर का जो उन्होंने इंश्योर किया कि कम से कम 4 से 5 बार एक्सटेंड हो, तो वो भी मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देखा था। रेफरल ट्रांसपोर्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, प्रसव सखी के बारे में मैंने बताया था, और इसी क्रम में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स थे। एनएचएम के लिए डायरेक्शन था कि जितने ऑपरेशन थिएटर्स हैं इनको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के रूप में डेवलप करें, और हमारे पास जितना स्टाफ डिप्लॉयमेंट है इसको यूनिफॉर्मली डिप्लॉय करें।
1: प्रदेश के करीब 690 सरकारी विद्यालय भवन में मरम्मत और 2000 से ज्यादा क्लासरूम के निर्माण का काम प्रगति पर है। इसके अलावा 1200 से अधिक नए विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य जारी है। स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने वीसी के जरिए शिक्षा विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की बैठक ली। श्री यादव ने सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में सुलभ शौचालयों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला और ब्लॉक अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का सघन निरीक्षण करने को कहा। साथ ही निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कर राज्य स्तर पर रिपोर्ट पेश करने की बात कही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस को व्यापक भागीदारी से जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। 23 सितंबर को मनाए जाने वाले 11वें आयुर्वेद दिवस के संबंध में आज उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद रखी गई है। श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के लिए 3 मुख्य स्तंभ तय किए गए हैं। इनमें बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद में साक्ष्य अनुसंधान और नवाचार और सामुदायिक कल्याण तथा सतत जीवन के लिए आयुर्वेद शामिल हैं। श्री जाधव ने कहा कि सरकार भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ ही इसकी वैश्विक स्वीकृति बढ़ाने पर काम कर रही है।
3: पूरी दुनिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, वेलनेस और होलिस्टिक हेल्थ की ओर सभी लोग देख रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारत के पास अपनी समृद्ध परंपरा और अनुभव है। इसलिए 11वां आयुर्वेद दिवस हमारे लिए केवल अपनी विरासत को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उस विरासत को भविष्य

0: सहित हजारों लाखों संतों ने हमारी परंपरा आज साबुत रखी है, उज्ज्वल रखी है और ऐसे में अपनी संस्कृति को बचाने वाले को शुरू से जो आज तक है उसको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
1: प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना है। हालांकि भरतपुर और कोटा संभाग के छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 12 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बरसात का नया दौर शुरू होने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान में भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के थमे रहने के आसार हैं। हालांकि बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश के बांधों में कुल क्षमता का लगभग 60% पानी आया है। 72 बांध लबालब हैं। पाली में आज पारंपरिक राजस्थानी लोक वाद्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। लोक मंथन यात्रा के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में प्रांत की समृद्ध संगीत की विरासत को दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनी में रावण हत्ता, इकतारा, वीणा, पूंगी, खड़ताल, भपंग और नगाड़ा सहित अन्य वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव के भदवा मेले में शामिल होने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा के समाधि स्थल रामदेवरा की ओर जाने वाले मार्गों में श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे, ध्वज यात्राएं और बाबा के जयकारे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। मुख्य मेला 13 सितंबर से भरेगा। इसके लिए दर्शनार्थियों की आवक शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए रेलवे की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मेले के दौरान बढ़ते यात्री भार को देखते हुए नियमित ट्रेनों के साथ ही मेला स्पेशल रेल भी चलाई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के 9 सितंबर को होने वाले पहले चरण के लिए प्रचार थमा। मतदान दल कल रवाना होंगे। जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस को व्यापक भागीदारी से जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने की संभावना। 12 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। भीलवाड़ा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बनी हुई हैं। भीलवाड़ा नगर निगम और बीगोद नगर पालिका में पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। इसके लिए प्रचार का आज अंतिम दिन होने के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। आज शाम प्रचार गतिविधियां थम गई। अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क के जरिए अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के प्रयासों में जुट गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने शहर में रोड शो कर वोट मांगे। दूसरी ओर कांग्रेस के रामलाल जाट और धीरज गुर्जर सहित कई बड़े नेताओं ने भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। इधर निर्दलीयों ने भी प्रचार के अंतिम समय तक एड़ी चोटी का जोर लगाया। उधर दूसरे चरण में 11 सितंबर को शेष नगर पालिकाओं में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। दो चरणों में होने वाले चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधु ने जिले में शत प्रतिशत मतदान के लिए सभी मतदाताओं से वोट डालने का कर्तव्य निभाने का आग्रह किया है। उधर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। रंगोली, पोस्टर और जागरूकता रैली के साथ ही विभिन्न नवाचारों के जरिए लोगों को मतदान

0: बलिदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार जिले में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार और नेक देकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। जिला कारागृह में बंदियों को भी उनकी बहनों ने राखी बांधकर अपराध की ओर नहीं बढ़ने की कसम दिलाई। रक्षाबंधन के अवसर पर भीलवाड़ा शहर सहित ग्रामीण अंचल में बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिली। कृष्ण जन्माष्टमी पर जिले भर में धार्मिक उल्लास का माहौल देखा गया। मंदिरों में आकर्षक सजावट के साथ भगवान के जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई। कई जगह भजन संध्या का आयोजन हुआ। मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर बधाइयां बांटी गईं। अगले दिन नंदोत्सव के आयोजन रखे गए। भक्तों को पंचामृत और पंजरी का प्रसाद वितरित किया गया। जिले में पिछले दिनों मौसम में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस बार अन्य सालों की तुलना में मॉनसून में कम बारिश के चलते जलाशयों में पानी की आवक कम रही। सावन माह में तेज बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरे पर चिंता देखने को मिली। खरीफ की फसल की पैदावार कम रहने और दलहनी फसलों में पीला रोग के कारण कृषि विभाग भी चिंतित दिखाई दे रहा है। विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जा रही है। जिले में मॉनसून के साथ ही वृक्षारोपण को लेकर भी जिलेवासियों में उत्साह बना रहा। एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत पौधे लगाए गए। जिला स्तरीय पौधरोपण कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। वहीं सावन पर जिले के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। शहर के हरणी महादेव मंदिर सहित सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में भगवान शिव के अभिषेक को लेकर भारी भीड़ देखी गई। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। जिलास्तरीय आयोजन पुलिस लाइन मैदान में हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर डॉ बैरवा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। लोगों को अंगदान का महत्व बताने के लिए पिछले दिनों अंगदान प्रतिज्ञा दिलाई गई। डिजिटल रूप से रखी गई अंगदान प्रतिज्ञा अभियान में 24,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सर्वाधिक संख्या में प्रतिज्ञा लेने पर भीलवाड़ा जिले को राज्यस्तरीय सम्मान से नवाजा गया। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी बीते दिनों भीलवाड़ा स्थित अपने पैतृक गांव कुराड़िया आई। अरुंधति का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं से निडर होकर आगे बढ़ने और देश के लिए काम करने की अपील की। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा 9 सितंबर न फेवन वाला पहला दौर सारू प्रचार रो काम पूरो फियो। पोलिंग पार्टियां काल रवाना भेला। न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान हाई कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश बनिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े वाना ओहदारी शपथ दिराई। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव आयुर्वेद दिवस ने जनता रो आंदोलन बनावन बाबत कहो। और राज्य में आवता 4-5 दिन चौमासारी बिरखा मंदी रेवन रा आसार। 12 सितंबर उ बिरखा ओजू शुरू हेवन री संभावना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा पहला दौर सारू प्रचार रो काम आज सिंचा पूरो फेंक्यो। इन पाछे अब उम्मीदवार घर घर जार प्रचार करण लग गया है। चुनाव रा पहला दौर रा प्रचार रा आखिरी दिन आज सियासी पार्टियां और उम्मीदवार वोट देवन वाला ने लुभावन सारू पूरो जोर लगा दिनो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अलवर और भरतपुर माए भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार री हिमायत माए रोड शो किन्नो। भीलवाड़ा विधानसभा में विपक्षरा नेता टीकाराम जुली अलवर जिला रा मालाखेड़ा रामगढ़ बहादुरपुर और अलवर माए चुनाव प्रचार किन्नो। निर्दलीय उम्मीदवार ही आप रा हिमायतियां सागर रोड शो कर और वोट देवन वाला ने लुभावन री कोशिश किन्नी। पहला दौर माए 9 सितंबर ने सवारे 7 सिंजा 6 बजे ताई वोट पड़ेला। राज्य निर्वाचन आयोग रे मुजब वोट देवन सारू मतदाता पहचान पत्र सागई 11 दूजा कागज ही बताया जा सकेला। ये चुनाव माए

0: बूथ लेवल अहलकार बीएलओ घर घर जार मतदान पर्ची नी बांटेला ई कारण वोट देवण वाला ने खुदरो नाम वोटर लिस्ट में देखनु वेला चुनाव आयोग री ओरू वोट देवण वाला ने मतदान केंद्र री जानकारी ऑनलाइन तरीकाओ मुहैया कराई जा रही है। स्वतंत्र निपक्ष और शांति सागर चुनाव करावण सारू निर्वाचन विभाग री तैयारियां आखिरी दौर में चल रही है। पहला दौर रा मतदान सारू पोलिंग पार्टियां री रवानगी काल सवारे शुरू भै जावेला। आयोग री ओरू तैनात पर्यवेक्षक मतदान केंद्रा रो जायजो ले रिया है। पुलिस और प्रशासन ही सावचेत है और न्यारा न्यारा हलका माए फ्लैग मार्च निकालिया जा रहा है। और जानकारी दे रही है समाचार कक्षों सलेहा गाजी।
1: चुनाव वाला 309 नगरीय निकाय माए 10 नगर निगम 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका शामिल है। स्थानीय चुनाव माए वोट देवण रा हकदार 1,44,00,000 उबत्ता लोग मताधिकार काम माए ले सकेला। वोट देवण रा हकदार लोगारी सबू बत्ती तादाद 24,00,000 नगर निगम जयपुर माए जबकि सबू कम तादाद 4,744 इंद्रगढ़ नगर पालिका माए है। 10,245 वार्डा माए वेवण वाला निकाय चुनाव सारू 16,465 मतदान केंद्र बनाई गया है। दो दौर माए वेवण वाला ई चुनाव सारू 1,15,000 उबत्ता कर्मचारियां री ड्यूटी लगाई जी है। शांति सागे चुनाव करावण बाबत करीब 1,00,000 पुलिस वाला ई मोर्चा संभालेला।
0: इबीच चुनाव माए वोट देवण वाला ने बत्तियों बत्ती भागीदारी तय करण सारू स्वीप कार्यक्रम में लगातार चाल रिया है। वोट देवण रे बारे माए जाग जगावण सारू सलुम्बर माए आज प्रगणक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार पीड़ा चावल देर वोट देवण रो न्योतो दिनो ईसा गई बुजुर्ग मतदाताओं रोई मान करी जियो। न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान हाई कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश बन गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज माने जयपुर रा लोक भवन माए राखी जिया जलसा माए ओहदारी सोगंती राई। इणु पहली मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नियुक्ति जारी करी जी मुख्य न्यायाधिपति री नियुक्ति अधिसूचना और वारंट बाचर सुनायो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मंत्रिमंडल रा सदस्य जनता रा नुमाइंदा राजस्थान हाई कोर्ट रा जज न्यायिक अहलकार और वकील मौजूद हा। हाई कोर्ट रा नुआ मुख्य न्यायाधीश आज जोधपुर मुख्य पीठ में कामकाज संभाल्यो। इ मौके बार एसोसिएशन रा ओहदादारा री ओरों मानो स्वागत करी चियो जदके न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी रो तबादलो भेवण परा वाने विदाई दी री जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राइजिंग राजस्थान रा तेज करी चिया न्यारा न्यारा करार जुड़िया काम माए तेजी लावण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए राइजिंग राजस्थान रा तेज करी चिया न्यारा न्यारा करार जुड़िया मामला री जानकारी लीनी। मुख्य सचिव कहो के आ कंपनियां ने जमीन देवण जुड़िया मामला बेगा निपटाया जावना चाहिए ताकि निवेश प्रस्ताव माथे वास्तव में काम करियो जा सके। मुख्य सचिव आज स्वास्थ्य विभाग रा अहलकारा सा गई मीटिंग कीनी। ई पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहा वे कहो के सगड़ा जिला अस्पताल माए ऑपरेशन थिएटर्स ने मॉड्यूलर ओटी रा रूप माए विकसित करण रा हुक्म दिया जिया है।
2: सिमिलरली एंटीनेटल केयर पे जो उनका फोकस रहा है एंटीनेटल केयर का जो उन्होंने इंश्योर किया कि कम से कम 4-5 बार एक्सटेंड हो तो वो भी मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में देखा था। रेफरल ट्रांसपोर्ट को मॉनिटर कर रहे हैं प्रसव सखी के बारे में मैंने बताया था और इसी क्रम में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स थे एनएचएम के लिए डायरेक्शन था कि जितने ऑपरेशन थिएटर्स हैं इनको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के रूप में डेवलप करें और हमारे पास जितना स्टाफ डिप्लॉयमेंट है इसको यूनिफॉर्मली डिप्लॉय करें।
0: प्रदेश री करीब 690 सरकारी स्कूला माए मरम्मत और 2,032 क्लासा बनावण रा काम चाल रहा है। ईसा गई 1,232 नुआ स्कूल भवन ही बनाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव आ जानकारी दीनी। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बनाई चुनाई रा काम गुणवत्ता सागे ते मियाद माए करावण रा हुकम दीना। श्री यादव सगली स्कूलों में सुलभ शौचालय बनावण सारू ही कहो।

0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव 23 सितंबर ने मनाया जावन वाला आयुर्वेद दिवस ने मोटा पैमाना माथे भागीदारियों जन आंदोलन बनावन बाबत कहो है। 11वां आयुर्वेद दिवस रे बारे में वे आज नई दिल्ली में खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। जाधव बतायो का आयुर्वेद दिवस रो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ कल के लिए आयुर्वेद राखी चियो है। वे कहो के इन साल बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सारू एकीकृत स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद में साक्ष्य अनुसंधान और नवाचार सामुदायिक कल्याण और सतत जीवन सारू आयुर्वेद माथे खास ध्यान दियो जावेला।
1: पूरी दुनिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, वेलनेस और होलिस्टिक हेल्थ की ओर सभी लोग देख रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारत के पास अपनी समृद्ध परंपरा और अनुभव है, इसलिए 11वां आयुर्वेद दिवस हमारे लिए केवल अपनी विरासत को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उस विरासत को भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं से जोड़ने का भी अवसर है।
0: राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े संस्कृत ने बार बार काम लेर जनतारी भाषा बनावन सारू कहो है। वे आज जयपुर रा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में राखी जिया दीक्षांत समारोह में बोल रहा है। कुलाधिपति कहो के भारत ज्ञान रो केंद्र रहो है और दूजा देशाओं ही लोग संस्कृत सीखण सारू भारत आवे है।
2: हमारी संस्कृति आज भी जीवंत है, उससे बढ़ रही है, कोई इसको खत्म नहीं कर सका। ऐसे हजारों लाखों संतों ने हमारी परंपरा आज साबुत रखी है, उज्ज्वल रखी है और ऐसे में अपनी संस्कृति को बचाने वाले को शुरू से जो आज तक है उसको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।
0: मौके राज्यपाल पीएचडी सबों बत्ता नंबर वाला ने सोनारा तमगा और उपाधियां देर नवाचा। इस आगे वह विश्वविद्यालय री पहल बनाई जी राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान री वेबसाइट जनता ने सौंपी। अरब मौसम प्रदेश माए आवता 4-5 दिन ताई चौमासारी बिरखा मंदी रहवन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब भरतपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे हल्की बारिश री संभावना है। महकमारे मुजब 12 सितंबर प्रदेश का उगनी हल्का माए कठे कठे बिरखा उजु स्वरूप वन री संभावना है। राज्य रा आतुनी हल्का माए बिरखा कम वन रा आसार है। हालांकि बीकानेर संभाग माए कठे कठे जोरदार बायरो बाज सके है। दूजी कानी जल संसाधन महकमारे मुजब फिलहाल राज्य रा बंधा माए बूतारो करीब 60% पानी आयो है। महकमाओं मिली जानकारी रे अनुसार 72 बंधा पूरा भर क्या है। पाली माए आज गावन बजावन रा पारंपरिक राजस्थानी लोक वाद्यां री प्रदर्शनी लगाई ची। लोक मंथन यात्रा रा तेत राखी जी प्रदर्शनी माए रावण हत्था, इकतारा, वीणा, पुंगी, खड़ताल, भपंग और नगाड़ा समेत न्यारा न्यारा वाद्य यंत्रां रो दर्शाव करी चियो। लोक देवता बाबा रामदेव रा भादवा मेला माए शामिल वेवन सारू मोटी तादाद माए जात्रु पूग रिया है। बाबा री समाधि री ठौड रामदेव रा ओड़ी जावन वाला गेला माथे जात्रुआ रा पैदल जत्था ध्वज जात्रावां और बाबा रा जयकाराओं माहौल भक्तिमय बन रियो है। बाबा रामदेव रो खास मेलो 13 सितंबर भरेला जिन सारू जात्रु आवन लग्या है। जात्रुआ री आसान आमद रफ्त सारू रेलवे खास इंतजाम कीना है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा जोधपुर मंडल रा प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी बतायो के मेला माए आवन जावन वाला री मोटी तादाद न ध्यान राखता थका नियमित रेला सागे मेला स्पेशल गाड़ियां ही चलाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। प्रदेश माए नगरीय निकाय चुनाव रा 9 सितंबर नवेवन वाला पहला दौर सारू प्रचार रो काम पूरो भियो। पोलिंग पार्टियां काल रवाना भेला। न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान हाई कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश बण्या। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े माने ओहदारी शपथ दिराई। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव आयुर्वेद दिवस ने जनतारो आंदोलन मनावन बाबत कहो हर प्रदेश में आवता चार पांच दिन चौमासारी बिरखा मंदिर हेवन रा आसार ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM में 103.7 MHz पर शाम के 7 बजे हैं प्रस्तुति कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: रोड और बीकानेर रोड माते गांव आयो है पहली पर्वत गोगड़ा। बट देखो खेत के मायने भाईर बायार लागोड़ा है, खेत के मायने मूंग पड़े है। व्याखो करा तावड़ी राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: काई नाम है सार, किसा गांव की कांकड़ है?
1: गोगलाव गांव ऐसा निकू गोदारा नाम है।
0: हाँ कुजी आपांग है जिको खेत बाया ने कितो टेम हो गयो?
1: खेत बयान 3 महीना हो गया ऐसा।
0: हाँ 3 महीना। तो अबार कितना दिन हुआ मूंग पाड़ता ने?
1: मूंग पाड़तन 5-7 दिन हुआ। बरसात मंडूड़ी जना।
0: अच्छा, बाकी अब की के बरसात क्या कम ही ज्यादा ही के ठीक ठाक है?
1: कम तो कह नहीं सका, बन थोड़ी कमी ही बरसात की यान नॉर्मली।
0: अपन के है जिको भाइयों पे लिखाई तैयारी करी?
1: वाणा पहले तो खेत की खन्नी करी बिन हुड़नो के वहां, बाद में पूरा खेत के तार बंदी बा सही करी वगैरह, पचाकड़ा वाकड़ा बे हटाया, वही काम करियो, खाद वात खिंडाई।
0: कितना बीघा जमीन है अपन?
1: जमीन तो हम पा कम ही बा, हमारे साथ जमीन तो 10-1 बीघा है। बड़ा काम है हमारा कम है, क्योंकि मार भाई बहन पढ़े, मैं तो यही पापा को सहयोग कर दा, पढ़ा तो भी थोड़ो यान
0: हाँ,
1: जन।
0: आप बताइयो कि भाई माइंड मूंग भाई उड़ा है तो मूंग का पच बीज कटू लाया?
1: मूंग का बीज है ना, दुकान मोल खरीदिया।
0: बाजारू
1: हाँ
0: पक्को बिल लाया? कौन लाया?
1: पक्को भी लेना है ऐसा।
0: पक्को बिलू काई फायदो है?
1: पक्को भी लुआ फायदो है कि अगर मूंग मतलब खराब भी आ जावे, बे उगे उगे नहीं
0: हाँ
1: तो आपा वापस शिकायत कर सका,
0: सही
1: इस
0: बात
1: वास्ते
0: है।
1: पक्को भी लेना चाहिए।
0: और आपांग है जिको खेत की माटी केड़ी है?
1: आपा के खेत की माटी कंकरी लिए सा।
0: तो इर मायने पचे किसी फसल छोकी माने?
1: ई मई मूंग और बाजरी चौकी माने।
0: तो पेल का ही मकाई भाई उड़ो?
1: पहल के बाजरी बावड़ी सा।
0: पेल का बाजरी तो फोर फोर बहुत है।
1: हाँ फोर फोर बाव तो धान बढ़िया हुए।
0: हाँ फोर फोर भाई, इन पचे खाद वगैरह किसी ने की?
1: खाद तो घर की देसी ना कि बेंसिया राका।
0: तो पचे कितनी भैंसिया हैं, कितने छोटा मोटा जीव रहे?
1: दो भैंसिया हैं सा, दो एक के लार पाड़ी पाड़ो है, चार ही है।
0: चार है। तो दूध कितो देवे हमारी माइन?
1: भैंसिया हैं जे क्या पंग देसी कौन राका सा, खुंडी राका जो फुल दूध आ रही है, टेम को 8 लीटर देवे। दोनों भैंसिया को मिला रहे, दोनों टाइम को 24 लीटर हो जावे।
0: 24? तो पचे दूध घरे बपराओ के डेरी में देवो?
1: ना ना डेरी देवा।
0: डेरी में पचे काई भाव मिले?
1: भाव तो चौका ही देवे, इतना टाइम तो 60 हो, अभी महंगाई होगी जन थोड़ा भाव हाव ही बढ़ावा जन, अभी 62 है।
0: 62 है? तो इसमें पचे रोजी ना ऊंचा नीचा हुए भाव?
1: नहीं ऊंचा नीचा की कोने फिक्स कर उड़ा है आपा के, तो फेट के आधार पर ले जाए, पर आपा भैंसिया दूध जाडू ये जन फेट कम आवे कोने।
0: तो आपांगे ये दोनों ब्याह ने कितो टाइम हुआ?
1: दोनों भी हैं 7-8 महीना हुआ है।
0: 7-8 महीना हुआ है। तो दोनों ही हाल दूजे?
1: हाँ
0: तो
1: दोनों ही दूजे।
0: लगभग सागे ब्याह उड़ी है कि?
1: हाँ सागे भी उड़ी है।
0: तो पचे हुआड़ में काई काई देवो थे?
1: हुआड़ में तो देखो सभी चीजा देवा, दूध ज्यादा चाहिए, जाडो चाहिए और क्वालिटी बढ़िया चाहिए जन, सभी चीजा
0: तो
1: देनी
0: काई
1: पड़े।
0: काई देवो?
1: बी में देखो तिल देवा,
0: हाँ
1: गोटा देवा, खल देवा
0: हाँ
1: और तो दाना मेथी देवा पीस परार, और गुगरिया देवा, हिंदी हेवा, अजवान वगैरह वगैरह।
0: कितना टाइम तक देवो?
1: ए भैया 2 महीना तक दे देवानी जन, दूध पूरा बढ़ जावे, नहीं जन बाद में फायदा कौन रहे, टाइम पर मिलूड़ो ही सही रहे।
0: और जान थे बताया कि भाई ए भैंसिया है, तो ए भैंसिया के अलावा गाय वगैरह कौन रखो?
1: नहीं गाय कौन रखा, भैंस ही रखा।
0: क्यों?
1: गाय है के दूध पतलो है, रितो बिके कौन, गांव में भैंस को दूध बढ़िया वे और बिके भी है, रुपया भी बढ़िया वे।
0: पचे खाद वगैरह को काई करो?
1: खाद है जे कि हम पांग खेत में नाका।
0: हाँ तो पचे है जो डिगड़ो करो के खाडो खोद रे कंपोस्ट करो?
1: कंपोस्ट करा।
0: पचे अपने कितना खाडा करी उड़ा है?
1: 2 खाड़ा कर उड़ा है।
0: एक बरी जाओ जने दू जोड़ चोर पचे बिन डाड़ दो, और पचे वो
1: हाँ
0: जाओ जने खेत में राड़ दो।
1: बी पर पानी डालता रहा जो को
0: हाँ
1: एकदम बढ़िया
0: कचरो और
1: खाड़ा
0: हगड़ो भाड़ा को और बुआ रो और
1: है।
0: वो हगड़ो भी में गाल लो।
1: हाँ
0: तो अपन के पचे चारों ओर बंटो काई देवो?
1: चारों तो देखो सा, कुत्तर है मूंगफलिया को चारों खावे, बेंचिया कुत्तर खावे को नहीं, इस वास्ते मूंगफलिया को चारों है, मूंगा को चारों है, गंवार को चारों है, ओ देवा।
0: हाँ और पचे बंटा में?
1: बंटा में खड़े कट्टा आवे और चूरी आवे मूंग की,
0: पचे
1: सोयाबीन की।
0: दूध के
1: हाँ
0: हिसाबु देवो के अंदाज हुई देवो?
1: नहीं नहीं जितो दूध हुए ना, भी आधो बंटो दिया ना जन्म दूध पूरा दे बेचे, नहीं जन बतो
0: ज्ञान अबार
1: देना
0: थे कहो के भाई 8 देवो जन थे, कितो देवो बंटो?
1: 4 मतलब 8 है ना किला दूध वेना जन, 4 किला बंटो चाहिए जी बेंस के।
0: एक टेम को?
1: हाँ एक टेम को।
0: एक टेम को यानी कि दिन में 8 किलो? तो वाह बंटो बंटो और बे खावे?
1: हाँ बंटे में भी एकदम बढ़िया चीज हुई ना जन, धन खाई या हर चीज खावे कोनी और दूध भी कौन देवे।
0: तो पचे दूध दे इधर तक की बंटो देवो के पचे भी देवो?
1: नहीं पचे भी देवा, क्योंकि दूध दिया बाद में भी हम कमजोरी ना आ जाए, इस वास्ते मैं तो कम ही छोटा पेंशन बन बाद में देवा
0: देवो।
1: हाँ
0: पचे अपने ए अबे कितना टाइम तक दूध दे?
1: ए मांगे तो पेंशन दूती दूती भी आ जाए, 1 महीना छोड़ा कमजोरी ना आ जाए, इस
0: अच्छा
1: वास्ते
0: खुद आप खुद ही छोड़ा?
1: हाँ खुद ही छोड़ा।
0: तो पचे पूरो दूध बटे डेरी में देवो के घरे भी आर ले जावे लोग?
1: नहीं डेरी में ही देवा, घर आर कौन राखा?
0: पचे घरे की तो के राखो?
1: घर जिमन आर राख ला, खुद के दूध दही में कमी ना आ जावे घी में। अच्छा, वा
0: तो पचे अपन है जिको के बार जान खेत के मायने आदमी लागोड़े, पचे घर घर का के अलावा आदमी पचे लेबर का ही लेवे? अबार
1: तो 500 रुपया लेवे, एक टाइम की रोटी लेवे और बैंक थोड़ो खर्चो पानी और वे अलग जको
0: बो सब देवनो पड़े अपन।
1: हां देवनो पड़े।
0: कितनी बजी हूं, कितनी बजी तक है करे?
1: अभी तो सुबह 6 बजी हूं, 1 बजी तक आवे।
0: तो पचे आपांगे रोटियां वगैरह आप खुद ही सब गालनो पड़े?
1: हां रोटी वगैरह सब गालनो पड़े, बेन लाना पड़े, छोड़ना और पड़े,
0: और
1: दो टाइम चाय पानी पड़े।
0: दो टाइम चाय और लानो ले जानो भी आपाने पड़े?
1: हाँ लानो ले जानो आपाने पड़े।
0: और निकू जी एक और बात पूछूं के जान आपांगे ट्यूबवेल वगैरह कोनी के?
1: ना ट्यूबवेल कोन आपांगे?
0: अटीने गोगड़ा ओखने है कोनी के? है
1: अटीन, अभी थोड़ी थोड़ी खोदन लागिया, पानी काई नीचे ज्यादा है जना। अटीन ट्यूबवेल
0: पानी थोड़ो नीचे है, ऊंडो है पानी। तो आपांगे है जिको पचे इमाने ढाणी वगैरह कोन बनाई?
1: नहीं ढाणी तो मतलब अट रेवा कौन दूर रेवा जन
0: जने। पछे पानी वगैरह व्यवस्था घरों ही ले रहो?
1: नहीं नहीं ओद बनोड़ो खेत में।
0: कटबो आगे है के?
1: हां आगे
0: आगे है। पछ कितना टैंकर को ओद है?
1: ओ तो फुल मोटो बनोड़ो, अंगोरू भरी जाओ बरसात के पानी।
0: बरसात भरी जाओ पछे आपांगे 12 महीने हट जावे?
1: हां आराम हो जाओ 12 महीने।
0: और आपांगे चारों मेर जाली क्या लगाई अटकाई, कोई नुकसान है के?
1: अरे नुकसान तो यहाँ है, रोज डार धपावे घना ऊपर जना जाली हाली कर तार लगाउड़ नीचे जना उजाड़ जावे। हाँ
0: पचे अपने जाली पच 12 महीने रखो के अबार खाली चौमासो चौमासो कर पच पाचा आगे?
1: नहीं 12 महीने ही रखा जो कोई उजाड़ नहीं कर दे खेत में बड़ हड़।
0: और अबे है जिको ताली वगैरह करियोड़ी, अबे मूंग आज बेड़ा कर ले वो?
1: हाँ आज बरसात को मौसम है जन बेड़ा करा।
0: देखो बादलार हुए काल परसू कटे सुरपाड़िया कने बटी ने ताजी बरसात हुई, आपांगे तो नुकसान माते अगर हो जावे जन
1: जने। तो अभी जरूरत मतलब किसान है बन मांगे तो मूंग पाडूड़ा जन जरूरत को नहीं।
0: तो पचे आपांगे इन मायने कितना गुतर जाए मूंग?
1: एवरेज तो लगभग बीघे के 3 क्विंटल देता लागे, क्योंकि खाद को खेड़ो रहे गो आपांगे जना।
0: सही बात है। और अबार जान लोग भी स्प्रे करे तो थे भी करो कौन करो?
1: ना ना आम पांके खाद को खेड़ो बीज रे बे लौड़ा जन स्प्रे की जरूरत ही कौन
0: है। बाकी देखो के देखा आप बार लोग है जिका अंधा धुंध छिड़काव करे भी पच गई है कि आपांग भली जरूरत वो चाहे मती वो पड़ोसी छिड़क दियो तो आप ही छिड़कता तो वो नुकसान करे हमें।
1: हाँ वो नुकसान करे, छिड़का जगह की करे और अड़ोस पड़ोस में भी प्रदूषण फैलावे, हवा ने वा जहरीली करे और भी कारण जीव जानवर है बे भी परेशान हुए।
0: और देखो के ज्यादा जहर छिड़के बार तरह तरह की बीमारियां हुए, कैंसर है, स्किन की बीमारी, अटैक है, शुगर है, सब ई कारण ही हुए।
1: और सुनन में भी आवे की दवाई छिड़के जन बट मौत होगी, दवाई छिड़कता बे सावधानी और कौन राके और बे मूंग आगे मंडी में देवे बे भी नुकसान ही है।
0: सही बात है।
1: और
0: घूम फिर आपा का नहीं चीज आनी है। तो आपां को जिको कार्यक्रम सुने बेन थे काई संदेश देनी चाहो के आपां आ चीज करा तो आपां फायदो रेवे?
1: बेन आई संदेश देनी चाहूँ कि देसी खेती में ना कीटनाशक को प्रयोग तो बिल्कुल करो ही ना, खाद बीज दो और टाइम टाइम निदान वगैरह करो जो को बढ़िया हुई, और वो प्रोग्राम है रोज सुनिया करो, इस पर बढ़िया बढ़िया विचार आवे जका की आंपा वास्ते फायदेमंद है।
0: वासा वा निकू जी थे मांगो इतनी चौकी चौकी हतावड़ी करी, था को घणो मानु धन्यवाद। राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240 168। और नागौर का एसटीडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हमारे

0: जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: तो हमारे किसान भाई ने निकुरी जरूर बंतल दाई आई और बतायो कि भाई आपने जिको रसायन को छिड़काव है जिको कम कम करनो छाई जे। अब हमारे किसान भाई उड़ीक राखे कि भाई राकेश भाई आया है, कई लाया तो भाई देखो कि भादवा को महीनो चाले है, सड़क माते देखा जटी जय बाबे की लोग कर रिया है और पैदल है जिको जात रू जा रिया, तो क्यों ने भादवा के महीना में बाबा रो भजन सुना, तो लो सुनो ओ भजन।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो भैया ने ओ लीलू गोडलियो जरूर दाया यो अनिल सेन और पार्टी को। तो भैया देखो कि अबारे जिका भी जात रू जावे बयान एक ही कहूँ है कि भैया रात का जी टाइम थे चलो थोड़ा एक तो रिफ्लेक्टर वाली जिकी चीज़ा हैं या तो बे पेनो ताकि भी है जिको कि ध्यान पड़ जावे गाड़ियाँ के भाई प्रकाश हो के भाई अट कोई मिनक चाल रहा है और चलो तो सड़क ने छोड़ और फुटपाथ माते जरूर चालनो चाहिए और सड़क को है जिको अपन के अगर विश्राम करो तो भी अपन है जिको सड़क को दूर करना चाहिए और जटे भी थान की सुविधा जटे जटे सरकार भी बनावे नहीं बनावे लोग आपके जातरू की सहायता वास्ते जटे जटे तंबू लगाए तो ब्याह में ही थाने आराम करना चाहिए जिकों का ये कि थान के भी सुविधा रहे और जिका लोग आवे जावे ब्याह ने भी सुविधा रहे कि भाई इकट्ठी दुर्घटना नहीं हुए। और अब देखो कि घड़ी का ना जो जान घड़ी कहे कि भाई राकेश भाई थोड़ा टाइम हुए पूरो तो भी पहले आप हाँ जिको कि आज नागौर मंडी रहा बाजार भाव रहा अभी बात कर ला तो आज नागौर मंडी में है जिको नया मूंग है जिको 8,000 उले 8,550 थी पुराना मूंग है जिको 6,000 उले 7,400 थी काला तिल रहा भाव है जिको 10,000 उले 11,200 थी सफ़ेद तिल रहा भाव 10,500 उले 11,600 थी जवार रा भाव है जिको 3,500 ले 4,500 तई गवार रा भाव 6,000 ले 6,435 तई तारा मीरा रा भाव 5,800 ले 6,125 तई जीरा रा भाव 17,500 ले 21,000 तई दाना मेथी रा भाव 6,000 ले 6,500 तई इस सब गोल रा भाव 9,500 ले 13,200 तई सौंफ रा भाव 8,000 ले 11,200 तई चीना रा भाव 5,500 ले 5,650 तई असलिया रा भाव 5,800 ले 6,000 तई हिंदी हुआ रा भाव 6,000 ले 7,400 तई ए भाव अगर किसी किसान भाई ने दाय आवे तो बे नागौर मंडी के मायने है जिको लार और आप है जिको मुनाफो कमा सके। पीरू है जिको चुनाव है ई कारण मंडी मायने छुट्टी रहेला तो आप पीरू है जिको आप रहे जिको के ट्रैक्टर टोली लेर मती आई जो अब घड़ी का जवान जन घड़ी के वे राकेश भाई खेती बाड़ी डो तेवड़े डो अटे हुए टाइम पूरो तो आप राकेश भाई ने दिलाओ सीख करा राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेतीबाड़ी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायास ही नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समय अनुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं, हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराड़ा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराड़ा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो

0: गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
1: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
2: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
1: बालक बालिका हो सकते हैं।
2: हाँ जी, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
1: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
2: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
2: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर
1: जी,
2: उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए
1: जी।
2: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
1: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
2: हाँ,
1: आप ये कहना चाहती
2: हैं? जी।
1: तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए NCERT की क्या भूमिका है?
2: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है
1: जी।
2: और इसी के चलते NCERT भी इसके सालगिरह को मना रहा है
1: जी।
2: जैसा कि हम देख सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं
1: जी,
2: उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है
1: जी।
2: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
1: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
2: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी
1: जी।
2: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक

0: तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें
1: उन सबको शामिल करती है।
0: शामिल करती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांग जनों में भी हमारी बहुत सारी
1: जी
0: लड़कियां होती हैं।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं SEDGs की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है, हमारी जो लड़कियां हैं या
1: ड्रॉप आउट
0: ट्रांसजेंडर
1: जिसको
0: ड्रॉपआउट
1: कहते हैं।
0: रेट्स जिसको
1: जी
0: हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: किन
0: इन
1: में, लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।
1: जी
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। अब हम ये जानना चाहेंगे, विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या-क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते
1: तो
0: हैं
1: सुरक्षित वातावरण।
0: सुरक्षित बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी बुनियादी ढांचे की। तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉपआउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है।
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बच्चियों
1: जी
0: का,
1: जी
0: लड़कियों का।
1: हाँ
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं,
1: जी
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सकें।
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती हैं।
0: आवास की सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है।
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध हों,
0: उपलब्ध हों।
1: आप ये कहना चाहती
0: जी
1: हैं?
0: जी
1: जी
0: तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं,
1: हाँ
0: तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सकें। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।
1: जी
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसे में स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है,
1: जी
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है, हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
1: जी
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की,
1: जी
0: जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC STs
1: आदिवासी
0: OBC
1: लोग, जनजातीय
0: माइनॉरिटी,
1: लोग।
0: जनजातीय लोग, है ना। तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे

0: में आया वो कुछ ऐसा है कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है,
1: जी
0: इसका अर्थ शायद ये है।
1: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है। जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं। बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है।
0: जी
1: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके।
0: जी
1: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
0: जी
1: है
0: जी
1: उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है।
0: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज
1: और
0: में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है
1: जी
0: तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको
1: जी
0: कम मिले,
1: जी
0: इस तरह की बातें होती थी पहले।
1: या हाँ,
0: जी
1: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है,
0: जी
1: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं।
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है।
0: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे।
1: जी
0: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर। हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग।
1: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज।
0: जी
1: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया।
0: जी
1: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें।
0: जी
1: जो जेंडर का अर्थ था वो
0: बिल्कुल
1: सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था, लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना
0: जबकि
1: है।
0: जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता है।
1: जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना,
0: जी
1: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है। और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं उनको भी शामिल किया गया है।
0: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
1: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता के जो लक्ष्य हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना,
0: जी
1: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है। दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सकें।
0: रूढ़िवादिता, जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
1: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं, महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं।
0: जी
1: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना।
0: जी
1: उसके अलावा जो हमारा हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
0: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
1: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें। जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
0: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
1: हाँ,
0: है ना?
1: जी जी जी। तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
0: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
1: बहुत ज्यादा
0: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है।
1: हाँ, जी। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
0: एक अलग छवि बनी,
1: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है।
0: हाँ, ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
1: एक पुरुष है। तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
0: चेयरपर्सन
1: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
0: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
1: जी, बहुत जरूरी है ये देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं। तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है।
0: बिल्कुल हो सकता है। जी।
1: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
0: न्यूट्रल वर्ड
1: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
0: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता कि शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
1: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो हैं खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी।
0: जी।
1: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि इस चीज को तोड़ते हुए हमें कक्षा में लड़कों और लड़कियों को एक साथ बिठाना चाहिए।
0: जी।
1: और एक मिश्रित रूप में, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सके और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक साथ भाग ले सके
0: और दोनों के बीच में एक समानता का भाव हो, कि हम एक साथ बैठ सकते हैं।
1: जी
0: जी।
1: और इसी तरह जैसे हमने अभी बहुत सारे उदाहरण की बात की थी, तो जो हमारा कामों का बंटवारा है, जिस तरह के काम हम रूढ़िवादी तरीके से बंटवारा करते हैं, ऐसा ना करें कि भारी सामान उठाने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
0: और खाना बनाने के लिए
1: लड़कियों को करें, या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं। तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए।
0: जी।
1: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें।
0: जी।
1: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा।
0: जेंडर न्यूट्रल भाषा यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
1: जी हाँ
0: जी हाँ।
1: तो कहने का

0: मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है, कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसकी बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग। इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं,
1: हाँ,
0: जो
1: विद्यार्थियों
0: कि
1: कह
0: एक
1: सकते
0: न्यूट्रल
1: हैं,
0: शब्द भी है।
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह
1: जी
0: सकते
1: हाँ,
0: हैं
1: जी हाँ।
0: जी। कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं,
1: जी
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहां लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है।
1: जी
0: तो बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए।
1: जी
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा
1: यस
0: होगा कि
1: जी,
0: नर्स का जो, जैसे ही हम सुनते हैं इस
1: नर्स
0: प्रोफेशन
1: की
0: के
1: जो
0: बारे
1: छवि
0: में,
1: है।
0: हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें, हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर हॉस्टेस की जो छवि है
1: जी
0: उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है।
0: जी, एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता।
1: जी
0: उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद, मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज
0: बट
1: होते हैं। जी
0: हाँ। तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को, सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सकें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे, तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं, जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला, आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है
1: जी
0: और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन, जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहाँ पर भी आप उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी।
1: जी
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया, वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है, जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही, और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 800-440-559 और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cait.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल।

से साथियों शुरुआत करते हैं। हमें इस कार्यक्रम में पहली फरमाइश प्राप्त हुई है, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह और अश्विनी शाह की। ये है पद्मा टॉकीज़ नेपा नगर मध्य प्रदेश से, इन्होंने फरमाइश की है फिल्म श्री 420 से। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का यह पहला नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है उत्तम सिंह बिलाई छत्तीसगढ़ से। उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, अमित जंगेल, सकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंगेल की, इन्होंने फरमाइश की है फिल्म बाबुल से। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मिंटू टॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा के वडिंग खेड़ा पंजाब से, और इसी के साथ ही पांडर कौड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे की। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये नगमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमिक चैनल से सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से। साथियों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप की। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है बन्या बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, इन्होंने फरमाइश की है कोई सा भी गाना सुनाने की। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहाँ की। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये नगमा।

शादियों कार्यक्रम दिल से में हमें अगली फरमाइश प्राप्त हुई है, लेकिन अब कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। लेकिन हम फरमाइशकर्ताओं का नाम बताना चाहते हैं। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल।

रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विविधा में जल की। जल की का नाम है तिजोरी।

0: मैं कहती हूँ कि जब भी मेरा कोई रिश्तेदार सगा संबंधी आता है या उनके आने का समाचार आता है तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता है। आज मेरा भाई आ रहा है तो तुम्हारा मूड ऑफ हो रहा है।
1: मूड ऑफ ना हो तो क्या हो, पहले ही हमारे सर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, कमर तोड़ महंगाई और ये बच्चों की फौज।
0: अरे ये बच्चों की फौज क्या मैंने बढ़ाई है?
1: और नहीं तो क्या मैंने बढ़ाई है? हाँ, मेरा दिमाग खराब ना करो, मैं भी इंसान हूँ, कोई गधा नहीं।
0: मैंने तो तुम्हें गधा या भैंसा नहीं कहा, अपने आप कुछ भी बनते रहो। तुम्हारे घर में क्या आई, पिछले 15 बरस से अपने भाई की सूरत तक देखने को तरस गई। कान खोल कर सुन लो, मेरा भाई आएगा आएगा आएगा, उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।
1: अच्छा बाबा अच्छा।
0: अच्छा नहीं, मैंने उन्हें तार भी दे दिया है।
1: क्या
0: बना लिया ना तीन कोने का मुंह, तुम मुंह सिकोड़ो या कुछ भी करो, तार में लिखवा दिया है कि पहली गाड़ी से चले आओ और आज अभी थोड़ी ही देर में गाड़ी आने ही वाली है, समझे? मैं रसोई घर में जा रही हूँ। गुड़िया बंटी चुनिया जुनिया डब्बू गब्बू चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मामा जी आने वाले हैं।
1: उफ, साला कहीं का, यहाँ तो न जाने कैसे जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हैं, और ऊपर से ये बेरोजगार साला, नहीं आ सकता उसका भैया।
0: क्या आ गए भैया?
1: जी नहीं, आ जाएंगे तो आपकी खिदमत में फौरन हाजिर करूंगा। देखता हूँ साला कैसे आता है, शायद आ गया साला। क्या है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? मेरा मतलब है आप, और इतना बड़ा बक्स लेकर, शायद काफी सामान लाया है साला।
2: आप किससे बातें कर रहे हैं जी?
1: भाई मैं बिल्कुल समझ गया, आप बच्चों के मामा हैं। अरे जुनिया की माँ पता नहीं क्या कर रही है। अरे गुणवंती जल्दी आओ, साले साहब आ गए हैं।
0: क्या भैया आ गए?
1: अरे इस बार तो वह बहुत बड़ा बक्सा लेकर आए अपने लिए।
0: बच्चों के लिए कपड़े लत्ते लाए होंगे, मेरे लिए साड़ियाँ और
1: मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे मैं भी तो उस साले का कुछ लगता हूँ।
0: तुम तो बुराइयाँ कर रहे थे, आखिर घुटने तो पेट की तरफ ही मुड़ेंगे ना, भाई को क्या आपकी बहन पे तरस नहीं आएगा?
1: शायद कोई बड़ी नौकरी मिल गई है।
3: बहन जी।
1: ओफो, वो बुला रहा है, मेरा मतलब है बुला रहे हैं।
0: अरे बक्सा तो उतरवाओ।
1: कितना कंजूस है तुम्हारा भाई, क्या एक कुली भी नहीं कर सकता था?
0: चलो पहले बक्सा तो उतरवाओ। सुनो ये कौन है?
1: क्या तुम्हारा भाई नहीं है? जी कौन है आप?
2: जी मैं
0: अरे शायद पीछे आ रहे होंगे, सामान इसके हाथ भिजवा दिया होगा।
1: मैं भी तो यही कहूँ कि इतना खस्ता हाल तुम्हारा भाई हो ही नहीं सकता।
2: जी इसे तो उतरवाइए।
1: अरे बाप रे इतना भारी। लेकिन भाई साहब आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आप तसल्ली से बैठिए।
2: जी मैं वो
1: क्या 10 रुपया एक बक्स का, अरे वो सामने तो रहा स्टेशन।
0: अजी आप भी क्या बातें करते हैं, पता नहीं इसमें कितना कीमती सामान है।
1: ऐसा करते हैं पहले सामान देख लें।
0: पहले इसे 10 रुपए देकर दफा करो।
1: अच्छा सुनो, वो जो कल मैंने तुम्हें 20 रुपए रखने को दिए थे ना, उसमें से 10 रुपए दे दो।
2: जी
1: ले लो भाई। अरे गुणवंती इस बेचारे को कोई शरबत वगैरह तो पिलवाओ।
0: अभी लाई।
2: जी माफ कीजिए, आप बार बार बाहर की तरफ क्या झांक रहे हैं?
1: वो बच्चों के मामा, मेरी पत्नी के भाई, यानी के मेरे साले, यानी के बक्सा।
2: कोई आने वाला था क्या?
1: हाँ, वो यानी के बक्सा।
2: ये बक्सा तो मैं खुद लाया हूँ, अब और कोई नहीं आएगा।
1: वो तो है ही, लेकिन तुम यानी के आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं?
2: मैंने कहा ना कि इस बक्से को मैं अकेले लाया हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है।
1: अरे मैं कहता था ना कि यही तुम्हारा भाई है।
0: लेकिन
1: छोड़ो, और फिर तुमने भी तो अपने भाई को मुद्दत से नहीं देखा है, इसलिए डिजाइन बदल गया होगा। अरे खड़ी क्यों हो, शरबत दो ना।
2: जी
1: पी लो भाई, खास तौर से तुम्हारे यानी कि आपके लिए बनवाया है, वरना हम तो पानी

0: पीकर गुजारा करते हैं।
1: जी बच्चे को,
0: अरे बच्चे तो खाते पीते रहते हैं, बड़े शरारती बच्चे हैं।
2: इन्होंने बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है।
0: मैंने?
2: और नहीं तो क्या मैंने?
1: देखिए आप लोग झगड़े नहीं, मैं चलता हूँ।
2: क्या आप बच्चों से मिले बगैर चले जाएंगे? घर पे सब कुशल तो है ना?
1: बहन जी सब कुशल है, लेकिन मैं ही मुसीबत में फंस गया हूँ।
0: रोइए नहीं भाई साहब, मेरा दिल बहुत कमजोर है। क्या बात है, आप हमें तो बताइए अपनी परेशानी।
1: जी परेशानी ही बताने आया हूँ, दरअसल मैं चोर हूँ।
2: चोर? और आप?
0: दरअसल साला है ना, इसलिए मजाक कर रहा है। वाह भाई साले,
1: देखिए भगवान के वास्ते गाली ना दीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच का चोर हूँ।
0: चोर? तो आप मेरी पत्नी के भाई, मेरे साले और बच्चों के मामा नहीं है?
1: जी नहीं, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ। मैं मुसीबत का मारा, तकदीर का ठुकराया एक बदनसीब चोर हूँ। चोरी करना मेरी मजबूरी नहीं, बिजनेस है।
0: चोर साहब वो तो ठीक है, लेकिन ये बक्सा?
1: ये बक्सा तो आपका ही है।
2: हमारा? लेकिन चोर जी हम मुफलिसों का बक्सा चुराने से आपको क्या लाभ?
0: अरे इसमें से तो कुछ आवाज सी आ रही है,
2: खोल कर देखो ना।
0: अरे बच्चा?
2: कितना खूबसूरत बच्चा है।
0: क्या खा खूबसूरत है, कपड़ों से बदबू आ रही है जैसे किसी अनाथालय से लाया गया हो। अबे लिबर्टा किधर है, दूर हो।
2: बच्चे को क्यों डांटते हो, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं।
0: अरे तुम्हारे इसी डायलॉग ने तो मुझे चक्कर घिन्नी बना दिया है।
1: जी ये आपका ही बच्चा है।
0: अरे चुप बे चोर के बच्चे, पहले ही यहाँ क्या कम बच्चे हैं जो अपनी हत्या को हमारे गले भर रहा है। मैं तो पुलिस पुलिस के अड़खंजे में फंसता नहीं हूँ, वरना दो मिनट में तुम्हें अंदर करवा देता मिस्टर चोर।
2: अजी छोड़िए भी, उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे।
1: आप मेहरबानी करके ध्यान से तो देखिए इसे, ये आपका ही बच्चा है। क्या नाम बताया था? हाँ डब्बू।
2: हमारा डब्बू? हाँ लगता तो वही है।
0: अरे छोड़ो भी, तुम भी इस चोर की बातों में कहाँ आ रही हो। कंबे कहाँ रहता है, क्या नाम है तेरे बाप का?
2: इसे डांटो नहीं, ये अपना डब्बू ही है।
0: होगा क्या अपना डब्बू? लेकिन चोर साहब जब इसको चोरी करके ले ही गए थे तो इसे वापस क्यों लाए? इसे अपना ही हुनर सिखाते हैं।
1: जी इसे चोरी करना सिखाता, यानी इसे भी चोर बनाता। भाई साहब आजकल अपना बिजनेस ठप हो रहा है, रकम गहने रखते हैं लोग बाग बैंक के लॉकर्स में, अब बचा टीवी फ्रिज अलमारी इसे कहाँ लेकर जाएंगे?
0: कुछ भी हो चोरी करना है एक आर्ट।
2: अरे आप भाषण ही झाड़ते रहोगे या कुछ करोगे भी?
1: मेरी भी तो कुछ सुनिए।
0: अरे अब और क्या सुनाओगे?
2: अरे उस गरीब को भी एक मौका दो।
1: मैं कई दिनों से भूखा था, कई घरों में चोरी करने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। पिछली तूफानी रात में मैं सन्नाटे को चीरता हुआ जब आपके सूने घर में घुसा।
0: सूने घर में? यानी कि घर में कोई नहीं था?
1: कोई भी नहीं।
0: चोर साहब रुकिए, क्यों जी उस रात तुम कहाँ गई थी मैं बाल बच्चों के?
2: मैं तो पड़ोस में टीवी पर प्रोग्राम देखने गई थी, लेकिन तुम कहाँ गए थे?
0: तुमसे नहीं कहा था मैंने कि क्रिकेट क्लब की मीटिंग है?
2: कभी बल्ला भी पकड़ा है जो कि क्रिकेट की मीटिंग में गए थे? चले हैं मुझे बनाने।
1: देखिए आप लोग झगड़िए नहीं, तो मैं कह रहा था कि अब क्या कह रहा था
2: कि सुने घर में
1: सन्नाटे को चीरता हुआ।
0: ये तो तुम पहले भी कह चुके हो,
1: तूफानी रात में
2: ये भी बता चुके हो, आगे बताओ जब तुम घर में घुसे।
1: हाँ जब मैं घुसा तो मैंने सबसे पहले ये बक्सा देखा, मैं समझा कि आज लक्ष्मी मुझ पर बहुत प्रसन्न है। मैंने झपट कर बक्स पर हाथ मारा, संदूक को उठाया और जब वो टस से मस न हुआ तो मैंने समझा ये तिजोरी है। पूरी ताकत से सर पर उठा लिया और अपनी किस्मत पर मुस्कुराता इतराता गाता चल पड़ा। काफी दूर चलते चलते सुबह हो गई और तभी
0: अब... क्या हुआ?
2: कुछ चमत्कार हुआ क्या?
1: हाँ चमत्कार, मेरी कनपट्टी से बहता हुआ पानी आया तो मैं समझा लक्ष्मी शायद रो रही है।
0: तुमने ठीक ही समझा।
1: नहीं
2: तो फिर क्या हुआ?
1: मैंने इस तिजोरी को सुनसान में उतारा और इधर उधर देखा, मेरी सांस रुक गई थी।
0: मेरी भी सांस थम गई है, पानी पी लेने दो। हाँ अब कहो।
1: मैंने तिजोरी खोली तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई।
2: क्यों क्या तिजोरी में कुछ नहीं था?
1: था।

ये अपने 10 रुपए लीजिए और ये तिजोरी संभालिए। मैं आज से अपना ये चोरी करने का बिजनेस छोड़ने की भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ। कुछ मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विविधा, जिसमें आपने सुना जल की, जल की का नाम है तिजोरी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। साथियों, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM एंड 103.7 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव

0: की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में एक सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
2: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
3: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
2: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की अजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 9 बजे है। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। श्रोताओं, शुरुआत करते हैं फिल्म साहेब से। आवाज किशोर कुमार और साथियों की है, संगीत बपी लेरे का और गीत लिखा है अनजान ने।

साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म झुक गया आसमान से। संगीत शंकर जयकिशन का और गीत लिखा है सैलेंदर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म जुमरों से। संगीत किशोर कुमार का और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

श्रोताओं, अब आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 MHz पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन से प्रसारित कार्यक्रम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी।
1: सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ, बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: हाँ, सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जीन से, आवाज कविता कृष्णमूर्ति की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत एआर रहमान का।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हाँ।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज़ ए आर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही क्षणों में होगा कार्यक्रम आज के फनकार।

0: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
1: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
0: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्यारे लाल संतोषी की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अगस्त 1916 को हुआ। एक निर्देशक के रूप में आपने 21 फिल्में निर्देशित की, कई गीत लिखे, स्क्रीन प्ले, आइडिया, संवाद, अतिरिक्त संवाद जैसे रचनात्मक कार्यों के साथ आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। निर्देशित फिल्मों में 1963 की फिल्म दिल ही तो है के इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: नजर।
1: हम एक हैं, ये वही फिल्म है जिसके माध्यम से पीएल संतोषी ने पहले पहल अपने निर्देशकीय गुण का परिचय फिल्म इंडस्ट्री को दिया, दर्शकों को दिया। इस फिल्म में दुर्गा खोटे, कमला कोटनिस, रहमान और देवानंद ने अभिनय किया था। गुरुदत्त ने इस फिल्म में पीएल संतोषी को असिस्ट किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी, लेकिन पीएल संतोषी के निर्देशन में 1947 में बनी

उन्हीं की लिखी रेहाना, इंदुमती, नासिर खान, दुलारी और मुमताज अली अभिनीत शहनाई ने उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी।

0: तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं खिलाऊं मुर्गी के अंडे अंडे खाना मेरे जान संडे के संडे।
1: प्यारे लाल श्रीवास्तव, यही पीएल संतोषी का पूरा नाम था। जबलपुर से मुंबई कह सकते हैं एक संयोग की वजह से पहुंचे थे आप। हुआ यूं कि इनके गृह नगर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फिल्म यूनिट को संवाद असिस्टेंट की जरूरत थी, और प्यारे लाल जी चूंकि एक बेहतरीन लेखक थे वो फिल्म यूनिट से जुड़ गए, शूट से जुड़ गए। बात आई और यूं ही नहीं गई। मेट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इनकी अपनी लेखनी पर विश्वास और लोगों के प्रोत्साहन की वजह से सन 1930 के दशक के मध्य में आप एक लेखक और गीतकार बनने की प्रबल इच्छा के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। आइए राज कपूर अभिनीत, पीएल संतोषी निर्देशित 1950 की सरगम के इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
2: वो हमसे

जी हाँ, हम बात कर रहे थे सन 1930 के मध्य में बॉम्बे पहुंचे पीएल संतोषी की, जिन्हें फिल्मी दुनिया ने एक निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक के रूप में इनकी कला को सराहा और इन्हें प्यार से अपनाया भी। 1937 में इन्हें जद्दनबाई की फिल्म मोती का हार के लिए कुछ एक गाने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ था। यही इनकी फिल्मों में एक पहली पहल सफल एंट्री थी। इसी फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं फिल्म नादान का ये गाना।

जद्दन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं पीएल संतोषी। इसी साल यानी 1937 में जीवन यापन में भी चार गाने आपने लिखे। यही वो समय था जब पीएल संतोषी एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की छलांग लगाते रहे, रंजीत स्टूडियो से बॉम्बे स्टूडियो और फिर प्रभात फिल्म्स। जब वो प्रभात फिल्म्स में थे तब 1946 में हम एक हैं फिल्म के निर्देशक का सौभाग्य इन्हें मिला। इनके द्वारा निर्देशित ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये गीत है इसी फिल्म का। आवाज अमीर बाई कर्नाटकी की है, संगीत हुसन लाल भगत राम का है।

सन 1950 की फिल्म सरगम को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। फिर तो 1950 की ही अपनी छाया 1952 की शिनशिना की बुबला बू, 1952 की छमछमा छम, शिनशिना की बुबला बू संतोषी प्रोडक्शंस के बैनर तली बनी फिल्म थी। लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में पीएल संतोषी का लिखा हुआ ये गीत।

संतोषी द्वारा निर्देशित अन्य फिल्मों में हैं 1953 की 40 बाबा एक चोर, 1955 की सबसे बड़ा रुपया और हम पंछी एक डाल के सन 1957 की फिल्म।

1957 की ही फिल्म गर्मा गर्म और सन 1959 की फिल्म पहली रात पीएल संतोषी की करियर की फिल्में थीं जिनकी बदौलत आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। ये गाना है फिल्म दिल्ली जंक्शन का, स्वर लता मंगेशकर का है।

अब जिक्र है भारत भूषण और मधुबाला अभिनीत 1960 की फिल्म बरसात की रात का। यह फिल्म एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया और इस फिल्म का निर्माण किया था आर चंद्रा ने। रोमांटिक संगीतमय फिल्म के रूप में यह एक बेमिसाल फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

बरसात की रात एक बेहद सफल फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता फिर पीएल संतोषी अपने आगे आने वाले वर्षों में दोहरा नहीं पाए। प्यार की दास्तान, सबसे बड़ा रुपया, हॉलीडे इन बॉम्बे और फिर नूतन राज कपूर अभिनीत फिल्म दिल ही तो है, इनकी असफलता पर मरहम नहीं लगा पाई। सन 1968 में जगदीप और जयमाला काले को लेकर पीएल संतोषी की आखिरी निर्देशित फिल्म आई थी रूप रुपया। ये गीत है फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता का, आइए सुनते हैं।

पीएल संतोषी ने कई फिल्मों को संगीतमय बनाया। सन 1937 से कई फिल्मों में इनके गीत जगह पाते रहे। तूफानी रोटी, बाजीगर, बन के चिड़िया, रिक्शावाला, आपकी मर्जी, पति पत्नी, ठोकर, अछूत, परदेसी जैसी फिल्मों में इनके गीत थे। ज्ञानदत्त और खेमचंद प्रकाश ने इनके गीतों को मौसीकी प्रदान की।

बॉम्बे टॉकीज में जब पीएल संतोषी थे तब इन्होंने अनजान और बसंत में गीतकार के रूप में गीत लिखे, जिनका संगीत निर्देशन पन्नालाल घोष ने किया था। यह है फिल्म बसंत का गाना, पारुल घोष की आवाज में।

किशन संतोषी और सी रामचंद्र के मिलाप से फिल्मों को ऐसे गाने मिले जो कर्णप्रिय तो थे ही, अपने समय से आगे के भी साबित हुए, जिनके साथ चल के कई गीतकारों संगीतकारों ने उस

मार्ग को अपनाया और सफलताएं पाई। संतोषी के गानों में सिर्फ शब्द की जादूगरी ही नहीं थी बल्कि मनोरंजन का पुट भी था जो गीत को रोचक बनाता था। जैसे सरगम के गीत इसका सीधा सरल उदाहरण है।

सन 1941 की अकेला, 1942 की स्टेशन मास्टर, 1951 की सौदागर, 1951 की ही घायल, 52 की अनहोनी, 1958 की दुल्हन और 1966 की अगलमन जैसी फिल्मों में आपने कई गीत लिखे। पीएल संतोषी ने लगभग 350 गीत 100 फिल्मों के लिए लिखे। एक निर्देशक और गीतकार के अलावा आप स्क्रीन प्ले राइटर और संवाद लेखक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। 1941 की झूला, स्टेशन मास्टर और निराला, 1950 की, 1958 की पोस्ट बॉक्स नंबर 999 और 1970 की मन की आंखें जैसी फिल्मों में रचनात्मक योगदान आपका रहा है। तमिल फिल्मों और तेलुगु फिल्मों के लिए भी आपका फिल्मी योगदान रहा है। सन 1950 और 1960 के दशक में पीएल संतोषी ने फिल्म को सजाया, संवारा और मनमोहक बनाया। पीएल संतोषी के बेटे प्रसिद्ध फिल्मकार राजकुमार संतोषी ने इस बात को माना था कि अपने आखिरी